0: शुभ कर्म। बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: राम राम मनीष भज्जा, कितने चले जा रहे?
2: हम कितने नहीं जा रहा, बस इतने ही थे और हम सोच रहे थे कि हम अपने साथियों से एक मुलाकात कर ले। में
1: हाँ।
2: तो हम अपने साथियों से सबसे पहले राम राम करण चाहतेंगे और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कार्यक्रम को सुनत
1: हेंगे।
2: हाँ,
1: अच्छा,
2: कार्यक्रम जो देख रहा है कि कार्यक्रम तो सुनत हेंगे हमारे साथी, लेकिन हमें एक शिकायत है कि साथियों से।
1: अरे तुम्हें साथियों से शिकायत है?
2: हाँ, फोन नहीं करत हेंगे।
1: अरे तो घबरावे वाली बात नहीं है मनीष भैया, देखो तुम का है कि जल्दी भावुक हो जाओ दई, वो तुम्हें जा लगत के वो एक कहावत है ना, तुरंत दान महाकल्याण। सो तुम सोचत के अब हाल हमने प्रोग्राम चला हुए को और अब हाल अपने श्रोता साथियों के फोन आ जावे।
2: हाँ।
1: तो ऐसो नहीं होते। देखो तुम्हें अगर हम ये बात की खुशी एक बता देवे कि अपनो जो प्रोग्राम पहले का हो तो कि सिर्फ रेडियो पे आते तो, है सो रेडियो पे ट्यून करते आदमी को कितनी परेशानी होती, लोग बाग सुना थे लेकिन फिर भी मेहनत करके पहाड़ियन पे चढ़ के पेड़न पे लगा के एंटीना, लेकिन अब का है ऐप से भी सुनते ही। और सबसे अच्छी बात जो हम बता देवे कि पहले अपन और इनकी जो पोस्टें जाऊती हती प्रोग्राम की जानकारी जब देते सो उमें कमाई लाइक आते, जो लाइक करे ना पसंद करते जो को सो उनकी संख्या जो हती कम हती, लेकिन अब अपन देखो तो उनकी संख्या बिलात बढ़ गई।
2: तो तुम्हारा कहवे को जो मतलब के आदमी अब हमारे श्रोता साथी सोशल मीडिया पे ज्यादा अपडेट रन लगे हेंगे, काहे से सोशल मीडिया को अभी जमान होगा और उनके पास एंड्रॉइड फोन रहेंगे और जैसे ही पोस्ट देखी और ऐप भी हमारे बहुत सारे साथियों ने डाउनलोड कर ले हैं तो हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। काहे से हम हमारे साथ जो स्नेह आपको बनो है वो और आप जो आपकी स्नेह से हम जो कार्यक्रम तैयार करा थेंगे, आपके समय को देखा दबाए, आपके जलवायु परिवर्तन को देखा दबाए, सारे चीजन को देखा दबाए, हम अपने श्रोता साथियों को कार्यक्रम जो बना थेंगे उनको भी बड़े अच्छी तरीके से सुना थे और हमें फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से भी बताते भी हैंगे।
1: बिल्कुल, अब देखो आपने व्हाट्सएप की कही हैगी तो हम व्हाट्सएप पे भी बता देवे कि रात के ना वे दिन रात देख रहा है कि क्या बज रहा है, फोन लगा दो अपने साथी पे तो
2: अच्छा।
1: काहे के दिन के काहे नेटवर्क तो बिजी जाऊते ही और अपन औरन को जो रेडियो बुंदेलखंड जेते बनो है गो सुबह तक ऐसा स्थान है गो के उते टावर ने कम आउते ही है, सो ई वजह से भी अपने साथी फोन तो लगा उठेंगे लेकिन वो अपन तक नहीं पहुंच पाते, तो ऐसे में आपको शिकायत करने की जरूरत नहीं है।
2: ठीक है भैया, तो सबसे पहले साथियों को बता दे वो चाहते हैं कि आज के जो कार्यक्रम शुभ कल में हम बहुत बहुत स्वागत कराते हैं आपके रेडियो साथी मनीष
1: और भैया हमें तो आप चिंता ही हुजो, हमारा नाम है वर्षा
2: और साथी रहो आप सुन रहे कार्यक्रम शुभ कल को।
1: श्रोताओं यह कार्यक्रम लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है और यह कार्यक्रम की 13वीं श्रृंखला है।
2: वर्षा आज के हमारे जो कार्यक्रम शुभ कल में आज अपन बैरू भौजी को भी सुनवा है साथियों को।
1: अरे बिल्कुल, ये नहीं सुनवाना है, बैरू भौजी को तो जमानो ही है।

0: कहे कि अपनी बैरो भौजी जो बातचीत करती हैं वह 101% सत्य हो जाएगी और हम तो लोग उन्हीं की बात मान लेते हैंगे। सो बैरो भौजी को अपन सुनेंगे और अपनो पर्यावरण को देखत भाई अपन यही पे बातचीत अपन हो कर वो जरूरी है गो। तो देखो हम तो जा कहेंगे कि पर्यावरण को बचावे के लाने छोटे से छोटो अगर उपाय भी आप कर रहे होगे तो समझ लो कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप जो ना सोचो कि आपने अरे छोटो ही सो काम करो हम काऊ बतावे, आपको बताने है गो कहे कि पर्यावरण के लाने अपन को कछु ना कछु करने आए है गो। और जो अपनी प्रकृति हैगी यानी नेचर हैगी तो जा अपने हिसाब से नहीं चलेगी अपन को बल्कि ई के हिसाब से चलने पर है गो।
1: बिल्कुल सही कही आपने। कैसे हम जो देख देंगे कि अगर अपन शादियन में भी जाते हैंगे दोस्तन से मिलते हैंगे तो अपन सेल्फी खींच के डाल देते हैंगे, और अगर अपन अच्छो काम कर ही रहेंगे जैसे पर्यावरण को बचावे के लाने आपने पेड़ लगा दो है गो या कोई को समझा दो है गो तो बाकी एक फोटो खींच के एक अपने फेसबुक पे डाल दे या इंस्टाग्राम पे डाल दे जहां से लोग देख के और जागरूक होंगे कि भाई साहब ये संग साथी वाले हमारे भैया हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर्यावरण को बचावे के लाने। तो अपन हो ऐसो प्रयास अथक प्रयास करने हैं कि जैसे एक दूसरे से चेन जुड़ जाएगी तभी अपन जो कार्यक्रम को एक सफल बना सकत हैंगे। एक मुहिम जो हमने सोची है थी कि आने वाले समय में हम अपने साथियों को इतना जागरूक कर दें कि जलवायु परिवर्तन के बारे में भी समझन लगे और संगे संगे पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है वो बाकी बचावे के लाने भी कम से कम सोच उनकी परिवर्तन हो जाएगी।
0: आपने देखो जा एक अच्छी बात कही हैगी कि फोटो डालबे को जमानो है गो। तो ई पे एक बात और हम क्या बोचाऊ थेंगे कि जैसे मान लो को जन्मदिन मनो, ठीक है जन्मदिन मनो सो उनने का करो बढ़िया केक काटो डीजे बजो और का कहते पार्टी अच्छी मनी। सो सब जने का कहे फोटो में डाल देते ही और वीडियो डाली फोटो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे फेसबुक के स्टेटस पे फोटो डाली सो पे के जो देखत कि कितने एक लाइक मिले और कितने कमेंट मिले। ठीक है
1: सही बात।
0: अब मान लो बात चीज हमने देख ली है तो हमने देख ली तो हमारे दिमाग में का चीज चले एक चीज चले कि अब हमारा जन्मदिन आए तो हम इसे और अच्छो करें इसे कि हमारी फेसबुक पे इसे ज्यादा लाइक और कमेंट बढ़ गए। तो अगर अपन अपने पर्यावरण को बचावे के लाने भी ऐसी कोनू उपाय कर रहे हैंगे तो आप भी उसको सोशल मीडिया पे यानी फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डालो ताकि आपकी पोस्ट को देखें। हो सका थे कुको एक नई उम्मीद मिलवे नई दिशा मिलवे कि अरे भज्जा ई के लाने भी अपन को काम करने आउते। जैसे अपन हंसी खुशी के पल तो सभी जने अपने दोस्तन के संग बांटा थेंगे तो अगर पर्यावरण कहे कि अपनो ही सबको है वो है ना और इसे अपन और जिंदा हैंगे अपन और खुली हवा में अगर सांस ले पा रहे तो इको सांस लेवे के लाने बनाने भी तो है अपन को शुद्ध बिल्कुल एकदम। तो यही से कि जो पोस्टें अपन फालतू की करते ही काम की भी पोस्टें करवे।
1: सही बात है बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही हैगी। और संगे संगे एक बात हमारे मन में और चल रही हैगी कैसे जब हम सवेरे आ रहे थे जो खुले जानवर नहीं रहेंगे रोड पे फिरत रहेंगे तो वे पन्नी जो रहते हैं पॉलीथीन उनको खा रहे थे तो उनको खावे से उनके स्वास्थ्य पर जो डॉक्टर बताते कि यदि पन्नी जानवर खा लेते हैंगे तो उनके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होते गो और संगे संगे हमारे पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान होते गो।
0: अरे नुकसान की ना कहो मनीष भैया तुम पता क्या होते ही अगर जानवर ने पन्नी खा ली तो भी उनकी आतन में चिपक जाऊती और भी निकरवे को तो कोनो चांस रहते ही नहीं है। तो इसे अपन पन्नी को कम से कम कितने अपन इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर अपन को ध्यान देवे की जरूरत है।
1: बिल्कुल सही कही है की बिल्कुल ध्यान देवे की बिल्कुल जरूरत है की और ध्यान की बात आई तो अपन वैरव भौजी को सुन लेते हैं वे भी कछु क्या वो चाह रही है पन्नी को रोक लगावे के लाने उनने भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो। तो चलो अपन बैरव भौजी को सुनाते हैं लेकिन कछु देर बाद सुनाते हैं एक लोकगीत को अपन सुन लेते हैं बाकी बाद कार्यक्रम में हम बैरव भौजी को सुनेंगे।

0: आप मनीष भैया अपन और अन्य अबे दिनेश मस्ताना जी और उनके साथियों की आवाज में इन्होंने से लोकगीत को सुनो है गो और हमें लगा था कि आप समय ना गवात भाई अपन को बेरू भोजी को भी सुन लें चज्जी का भी अपन को बहुत ही उम्दा जानकारी दे रही है।
1: तो चलो अपन सुनते हैं बेरू भोजी की जरूर नाटक को।
2: कल्लू के पापा हमें लगा लेकर गए, मैं रात भर चिल्लिया चिल्लिया के हट जा, भुनसा रहे जल्दी आ जाओ, भुनसा रहे जल्दी आ जाओ, लाइट भी चली जा, हाँ हाँ सोते जाने कि तीनों बैठी रहते ही, अब आन दो रुक जाओ फिर मैं बता दूंगी, मुझे इतना काम डरो, मुझे आज सब्जी भाजी नहीं आ बिल्कुल घर में, क्या घोड़े बना लूं मैं अपने घर में, मेरी तो समझ में नहीं आती कि मैं करूं का, इनके माँ इतने परेशान हो गए, ओ कल्लूगा कितने मारेगा, ऐसे ही मोड़ी मोड़ा हो गए बिल्कुल।
3: तुम्हें तो उठत बैठत गलत रहे जी, का बात है बता, काय को बुलाओ?
2: मैंने काय को बुलाओ?
3: और वो कलुगा तो गाओ तो तीरथ,
2: तो मैंने तुम्हें बुला भी खिलाने गई थी के काको थे, अब घर में कछु नहीं है खावे, मैं क्या करूँ बताओ, मैं क्या बना लूँ, मैं तो पूरी जिंदगी
3: तो उसे तना कछु कर सोते हैं तो फिफ्टी बताने लगा।
2: हाँ तुम्हें तो यानी फिफ्टी दिखा रहे, मैं बताऊँ कछु नहीं है घर में, आज खावे मैं क्या बना लूँ मोड़ी मोड़न खिलाने।
3: अरे तो ऐसी कही तो जात कछु बात की,
2: तो मैंने रात में कही नहीं आती क्या तुमसे,
3: अब मैं सो गाओ तो रात के हारो था को तू पतो ही है, चाय से लगी बड़बड़ा भी मैं रात है तो पानी बना भी जात,
2: तो तुम पानी बना रहे, मैं घर को काम तो कर रही होंगी, कौन का चू मैं पर ही रत होंगी।
3: अरे तो बताई तो जात, मैं सवेरे तो आ गया तो खाई नहीं गई, अब मैं लाया सब,
2: अब तुम रंदो तुम पानी को चले जाओ, मैं चली जाऊंगी लाला जू के संगे,
3: अब तेने किचन गार्डन तो लगाओ तो बाह में नहीं हो सब्जी,
2: वो तो जाते आपका रोज के रोज मेरे बाद ना बेच आई थी इकट्ठी, अब पानी डाल दो फिर से वही जाओ, तुम
3: बेच भी की जरूरत घर चाहे हुए चाहे ना हुए,
2: तो मैंने पूछ तो ले थी तुमसे कि मैं बेच दूं कि नहीं बेच दूं, मोए पे चढ़े यार बिल्कुल।
3: अरे तो अब जितने पैसा जैसे बेच वे से मिली थी अब इनसे फिर से खरीद लो तनक मनक,
2: तुम्हें पैसा खोर हो रही क्या?
4: अरे अरे का होगा भाजी, काय लगे भौजी घुमारे, वो कल कह रहा था कि मम्मी घुमा रहा है पापा काय मार रहे होता,
3: तू तो तनक में खबर पड़ जाए तेई तो मूड पे चढ़ाए जाए।
4: अरे भज्जा ऐसी कछु बात नहीं है, क्या हम तो तनक जो देखा था के का हाल चाल चल रहा अपनी भौजी के भज्जा को का घर को कैसो का हाल चाल है,
2: तो लाला जी वो मैं इनसे कह रही थी कि बिल्कुल सब्जी भाजी नहीं आती, तो अब लाला जी मैं का करूं, मैं का बना लूं रोज की रोज, ये मोई पे बड़े बिल्कुल 24 घंटा मोई पे गुस्सा होता रहता बिल्कुल,
3: देख ले जाए तो केवल बहानो छे जिद लड़वे को,
2: कब लड़ी मैं बताऊ कहूँ लड़ी, आज ही तो लड़ी हो
3: कैसे चिपके बता रही, देख लेते हैं
4: लेते शांत हो जाते हैं, काय लगी भज्जा ने तनक, अब हार थको है तो आदमी को तनक कछु के है तो चेट तो जरूरी आदमी, अब
2: हाउ सब मुँह पे उतरत बिल्कुल गुस्सा, मैं तो बिल्कुल ऐसी आई होंगी।
3: अरे अरे चुप हो जा अब नहीं रो, हाँ सही तो कह रहा और वो,
2: हाँ वो यान तो आप सही कह रहे, अब तुम दो जाने क्यों गए होंगे, अब मेरी को है वो पिछले भी।
4: अरे भाजी ऐसी कछु बात नहीं है, को उसे नहीं मिल रहा, जो है कि अब जैसे कोनो आदमी हार थकवा तो बात पूछे के का पानी पीने के का खाने, और तुम और उल्टी गाड़ी में सुनाने लगो तो आदमी को दिमाग खराब ना हुए।
2: अच्छा और मैं दिन भर की काम कर रही, सुमे कछु नहीं है, मैं को नहीं पूछे भज्जा ने एक बार पूछे कि मैं दिन भर का करत होंगी।
3: हाँ मुझे तो पतो है कि ते घूमे भी जात लाला जू के संग में, अब तो शांत रहिए, अगर रोई गाई अगर मुझे पतो चल गाओ फिर मैं शाम के बताऊँ तुम्हें।
2: हाँ मुझे काकन ने रोके, मुझे सब आराम से मिलत रहे, सो मुझे काकन ने चार बातें करके,
3: ठीक है लाला जू तो है सो इनसे मंगा लीजिए जो कमी पड़े सो।
2: लाला जू देख लो तुमने अपने भज्जा को, जी है इनके हाल।
4: अरे भौजी घर में ऐसा नहीं हो, तना तुम शांत हो जाओ करे, भज्जा कहूँ गुस्सा हो तो तुम हो जाओ शांत, कहूँ बे हो जाओ करे शांत, ऐसे चलत घर बार।
2: हाँ तुम हो सो तुम हम

0: ये डॉक्टर लगे होंगे। अब मैं बाजारे जा रही थी। हाँ
1: बाजारे जाने?
0: हाँ।
1: अरे बाजारे तो मैं जा रहा तो वो कल पहुँच गया के मम्मी को मार रहा पापा है। मैं तो ऐसी सुनी से दो रोटी नहीं खा पाई।
0: काले पे जा रहे थे, मुझे तो सब्जी ले भेजाने लाला जी। चलो मैं तुम्हारी संगे।
1: अरे तो मैं राशन ले आने तो घर को धनु कह रही थी कि वो चून बढ़ा गो तो एक बोरी ले आने। तो चून मुनो वो तनक मसाले ले आने थे।
0: हाँ ठीक है तो फिर चलो। फिर मैं अभी चल रही संगे नहीं तो चलेंगे अभी तो जाने मंडी तक। ले लो लाला जी तुम ले लो, हम ले लेते तो सब्जी।
1: हाँ भाजी मैं बगल की बापा सेठ की दुकान से जो सौदा लेता हूँ तनक।
2: हाँ, मसाले लेने तो तनक
1: वो लेने तो आटो लेने तो
0: ले आओ। हाँ, ले आओ ले आओ और मैं लाए ले खाऊंगी। जा सब्जी तो क्यों का भाव दई? अच्छा आलू है का भाव दई? 10 रुपया किलो दे दू मैं ठेला में डाल दू। डाल दू।
1: अरे भज्जा जल्दी कर तनक भाजी और हमें चेक चेक करने लगे का टाइम का जल्दी दे दो तनक मसाले दे दो। अब काय में दे रहे? अरे पन्नियाने में दे दो तुमसे कितनी दार कही अब कौन घर से हम हमेशा झूल ले लिया है। पन्नियाने में दे दो जल्दी भौजी और हल्ला करे ले आओ जल्दी रख दो ले जो पैसा अपने। चलो भौजी ले ले हमने सब्जी।
0: का कह रहे लाला जी अबे और रुकने कितने टाइम और रुकने?
1: अरे लेबगा मसाले मसाले सब जो ले लो 5 किलो।
0: का लेबगा है?
1: हाँ लेबगा है।
0: अच्छा हाँ और काय में रख लो सामान?
1: अब जो पन्नियाने में रख लो काय में?
0: लाला जी मैंने कही थी बाद ना भी तुम्हें समझाई थी कि पन्नियन में अभी आधी दूर तक जाने से पूरी फट जाने और दूसरी अपना जो कितना नुकसान हो रहा है पन्नियन से पर्यावरण को बाद ना मैंने समझाई थी तुम्हें।
1: अरे भौजी क्या करूँ ख्याल नहीं रहता का के तो घर से आते ना जल्दी जल्दी में नहीं रहता।
0: जब लाला जी तुम ही नहीं करोगे तो फिर और को अपने और पड़ोस में तो को कर भी वालो नहीं है। बताओ जब तुम ही निकाल को वो नहीं कर रहे। अब मैंने बाद ना भी तुम्हें समझाई थी आज भी कह रही अब तो ध्यान रखियो कम से कम पन्नियन से। बाद में देखो तुम्हारी गज्जा ने खा ली थी पन्नी मर गई थी बाकी नहीं मर गई थी।
1: हाँ जा तो यानी सांची कह रही तो अब पक्के में ध्यान रखने आपकी रास्ते में जब भी आओ तो झूला लेके।
0: हाँ तो लाला जू अब चलो चलेंगे तो फिर ब्लैक टाइम होगा क्योंकि मैं तो आज पूरा भज्जा लड़ पड़े सो दिमाग के सो खराब है वो टेंशन में है पूरा दिमाग।
1: अब तो भाई जी अब जा बात छोड़ते लड़िए ना अब शांत रहिए घर हल्ला ना करिए।
0: देख तुम याद रखियो अगली बार से पन्नी ना ले आज बाजार में।
1: अगली बार से तो झूला ही ले आऊ मैं।
3: हाँ हाँ मजा ही आ गया राम धई। बेरू भौजी जो बातें अपन को बताती हैं एकदम सटीक रहती हैं और एकदम सही बात बिल्कुल फिट बैठने वाली बात बताती हैंगी। बहुत अच्छी बात लगा था मैं उनकी
4: सही कही कैसे उनने हमें बेरू भौजी के नाटक में 3 चीजें हमने समझी हैंगी। एक तो जा समझी है कि सबसे पहले हमारे जो महिलाएं हैंगी उनको बचत करवो बहुत जरूरी है।
3: अच्छा तुम जो बताओ हमें एक बात महिलाएं नहीं खो का जरूरी है गो?
4: महिलाओं को जासन जरूरी है।
3: हाँ।
4: यदि पुरुष उनके घर से बाहर चले गए हैंगे।
3: हाँ।
4: या कि तुम गांव में बैठे हुए चले गए हैंगे और सब्जी की जरूरत पड़ रही हैगी तो बैठी हैं ये लोग जब तक वे यहाँ
3: बैठे हैं सुबह उनके हाथ में भी तो बात है ना पैसा टका
4: तो वो नहीं आते।
3: मनीष भैया आप जो गलत बात कह रहे हैं अब वे महिलाएं नहीं रही पहले जैसी कि घर ही में रहती और आदमी को इंतजार करती की जब वे आवे जब वही पैसा खे चुने जब वही हम कछु सामान ले। अब तो देखो पूरे हिसाब किताब उन्हीं के हाथ में रहते और अपनी बहनें खुद इतनी सक्षम हो गई कि वे अपने पांव पे खड़ी भी हो रही।
4: सही वो तो बात सही है कि क्या कैसे अब बहुत सारी योजना और बहुत सारे समूह के माध्यम से महिलाओं को अपने सशक्त करो जा रहा है बहुत अच्छे माध्यम है। और संगे संगे जो समूह के माध्यम से बचत की बात होती हैगी और साथ में आपसी जो बातचीत होती हैगी बासे अपने बहुत सारी हमारी बहनों को बहुत लाभ भी मिलो है गो। जो बात तो हम के वो सही बात है तुम्हारी के हमारी बहनें सशक्त हो रही और मजबूत हो रही हैं लेकिन अबे भी कछु गांव में जब प्रथा भी हैगी के वे जब तक उनके आदमी नहीं आएंगे तब तक वे घर से ना तो बाहर न करती हैंगी और सब्जी की तो बात छोड़ो वे उनके पास पैसा भी नहीं रहेंगे बच्चन की पढ़ाई के लाने भी वे उन हमारे जो मुखिया रहेंगे उन पे आश्रित हो जाती हैं। तो हमें बचत हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैगी।
3: तो देखो हम ही में जाके वो चाहूंगे कि बचत जानी कह सकत आपके केवल महिलाएं के लाने जरूरी है बल्कि सब जनन के लाने हम सबके लाने बचत बहुत ज्यादा जरूरत होतेगी। हाँ तो दूसरी बात का सीखी?
4: दूसरी बात हमें जा सीखी के सब्जी तो देखो इतनी महंगी हैगी
3: बिल्कुल है।
4: और हमारे जो घर पे बहने बैठी रहती हैगी तो वे एक काम कर सकती हैं जैसे अपन ने पहले किचन गार्डन नहीं बताओ तो उनको
3: हाँ।
4: कि किचन गार्डन को कॉन्सेप्ट बताओ तो कि किचन गार्डन हमारे बहने कैसे लगा सकते हैंगी अपने घर में तो बामे का हो तो एक तो बचत होतेगी।

0: बचत कैसी बचत होते है? जैसे पड़ोसी के पास गार्डन नहीं है या घर में आंगन नहीं है उनके पास, तो पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के यहाँ लगा के उनसे सब्जी ले सकते हैं। तो सब्जी का ऐसे बहुत महंगी रहतेगी, तो अगर छोटी छोटी हमने पौध ले आके हाट से पौध ले आके या बाजार से पौध लगा के अपने आंगन घर आंगन में लगा दिएगी, बासे अपने परिवार को भी खर्चा चलेगा, अपने पड़ोसी को खर्चा चलेगा, और अपन को ताजी ताजी सब्जी अपन को मिलेगी।
1: या तो आपने ए नई नोनी बात कही हैगी कि अगर अपन घर में किचन गार्डन जैसी लगा उठेंगे तो जो छोटी छोटी सी चीजें रहती बहुत मामूली सी, जैसे कि अपन ने टमाटर लगा लाए, मिर्चें लगा लाई, धना लगा लाए, और का कहते हैं
0: बटा
1: भटा, हाँ भटा लगा लाए, और में वही में एक दो गोभी लगा लो,
0: हाँ
1: धीरे धीरे करके ऐसी चीजें अपन लगाते रहो अगर, तो भी एक दिन आपको इतना फायदा दे, इतना फायदा दे, फायदा मतलब ऐसा नहीं है कि डलियन बांध दिया भेजिया,
0: हाँ
1: ऐसा फायदा कि अपन को ताजी सब्जी घरे की मिलेगी वो बिना केमिकल वाली,
0: बिल्कुल सही
1: ताकि
0: कह रहे
1: बाजार में जो मिल रही वह केमिकल वाली सब्जी मिल रही हैगी, तो अपन एकदम कत नहीं है कि शुद्ध खाओ और स्वस्थ रहो,
0: सही कहा।
1: तो ऐसा अपन को महसूस भी होने लगे है गो, तो आप जो कॉन्सेप्ट जो है गो किचन गार्डन को वो भी आप अपना सकत हो।
0: और तीसरी बात हमने सुनी हैगी और अच्छी लगी हैगी कि भौजी बाजार में गई हैं और उनने खूब मना करी कि भैया पॉलीथीन को इस्तेमाल हमें नहीं करने है गो। खासतौर पे हमने पहले भी शुरुआत में बताई थी कि काहे से पॉलीथीन को इस्तेमाल करने से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान है, जानवरों को नुकसान है और हमें आपको तो है ही गो जो नुकसान है, तो जी बात को हमें विशेष तौर पर ध्यान रखने है गो।
1: तो देखो जा तो बात आप सही कह रहे हैं, तीसरी बात जो आपने सीखी हैगी, काहे कि पन्नी से अपन को खुद को नुकसान होते है गो, अपने ढोर बछेऊ जो फिरत रहते हैं बेचारे, देखो भी तो का उसे कह नहीं पा रहे हैंगे हैं, उन्हें तो जब भूख लगा थेगी सुबह तो पन्नी में बंदो मिला सामान सुबह पन्नी समेत खा जात, काहे कि भी गठान तो खोल नहीं सका थेगी,
0: सही बात
1: तो
0: है
1: एक तो हमोरन की खुद से गलती जा रहे थेगी में कि जो भी खाबे पीबे को सामान जब अपन बाहर फेंका थेंगे, तो एक तो वो ऐसे ना फेंको बिल्कुल भी पन्नी में बांध के, खास तौर से काहे के गन्ना बच्चे जो हैंगे भी पन्नी उठा के पूरी खा ले उठेंगे, तो खाबे की चीज अगर हैगी तो आप खुले में ऐसी रखो कि आपको पता हो कि हाँ इतने जो डोर बच्चे रोज आउ थे वो और इतना वो खाबे के लाने खड़ो होते, तो एक बढ़िया सा पत्थर रख दो सो ऊपर आप वो खाबे को सामान रख दो और जी में वो डोर बच्चे हुआ है वो खेओ अपनो चलो जाए, जो नहीं है कि पन्नी में बांध के आपने फेंक दो सो बस वो तो पका है उसमें तो खावे की वो है भूख है, पेट में जब भूख लगा तो कछु नहीं दिखाता है सो वो पन्नी समेत खा जाऊ थे, और दूसरा अपन को पर्यावरण से भी इससे काफी फायदा मिले है जब अपन पन्नी को इस्तेमाल कम करेंगे। देखो पहले की समय की अगर बात करें तो पहले अपने जो पुराने लोग हते जो दादा परदादा या नाना नानी हते हमेशा जब भी बाजारे जाते तो कहते ल्या बेटा वो थैला दीजिए बाजारे हुए आए, लेकिन अब वो चलन नहीं, अब का कहते के रंदो ऐसे खाली चले जा रहा है वो तीन सौ पन्नी इनमें डांग ले आए, तो अपने ही हो रहे हैं कितों ना कितों इन चीज को खराब कर रहे थेंगे, तो अपन को वो खराब नहीं करने हैं, अपन को कह नहीं रहे हम के संगे संगे जो भी ध्यान रखने के अपन को अगर खुली हवा में सांस लेने हैं गो तो अपने पर्यावरण को ध्यान अपन को रखने आए और अपन को ई के हिसाब से चलने है ना कि पर्यावरण अपने हिसाब से चले है वो।
0: बिल्कुल सही कही वैसा। और हमने तीन चीजें सीखी सो आपको हमने बता दी हैंगी, और अब हमारे साथियों ने का सीखो है भी हमें बताएं, कैसे अब हमारा समय भी हो रहा जा कार्यक्रम शुभ कल से जाबे को, तो उनने का सीखो है गो भी हमें बता सकत हमारे जा नंबर पे।
1: साथ ही हमारा नंबर है 92 19 20 77 49।
0: और साथियों आपके कार्यक्रम में जब हम आएंगे तो हम आपको पूछेंगे आपसे कि आपने हमारे जो कार्यक्रम हते उनमें आपने काशी को है वो, तो जरूर शामिल हो हमारे जय कार्यक्रम में, अपने सुझाव जरूर दे होगे और संगे संगे आप हमें बता भी सकते हैं कि और कार्यक्रम में का अच्छो लगो और कौन विषय पर आपको बातचीत को सुनने हैं, तो वह विषय को लेकर हम कार्यक्रम में हाजिर जरूर होंगे।
1: बिल्कुल, तो आप अपन चला थेंगे आज के कार्यक्रम से, फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।
0: नमस्कार। शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार।

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष,
0: लेकर हाजिर हैं आपका कार्यक्रम हम होंगे कामयाब। श्रोताओं आज हम होंगे कामयाब में हम बात करेंगे व्यक्तित्व विकास की, कि जो हमारा व्यक्तित्व विकास

0: बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये बातें अहम रहती हैं जब तक जब आप किसी बड़े इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर आप नए करियर की शुरुआत करते हैं। तो कुछ बातें हैं जो हमें बेहद जरूरी जानना है, क्योंकि देखा जाता है कि कैरियर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कुछ बातें रहती हैं व्यक्तित्व विकास के लिए। सरल परिभाषा में कहा जाता है कि व्यक्ति के आचरण, व्यवहार, शिक्षा, योग्यता, शालीनता, पहनावा, उदारता, त्याग, क्षमा, बौद्धिकता जैसे तत्वों को अपनाकर जो अपनी छवि को औरों से अलग प्रस्तुत करता है, उसे ही व्यक्तित्व विकास कहा जाता है।
1: इसके साथ ही साथ जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र में यदि आप किसी को भी प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको बेहतर प्रदर्शन करने होगा। इसके लिए आपको किसी को भी आकर्षित करने का हुनर आना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब आपके अंदर श्रेष्ठ गुणों का समावेश हो। अब हम आपको बताते हैं कि वह गुण या टिप्स कौन से हैं।
0: सबसे पहला होता है कि संतुलित एवं सुंदर आपका शरीर होना चाहिए। ये आपको बताता है, आपके व्यक्तित्व को पहचानता है, क्योंकि संतुलित शरीर से व्यक्ति की पहचान होती है, जिससे व्यक्ति के हाव भाव, चाल चलन, उठने बैठने और कार्य करने की क्रिया का पता चलता है। इसलिए शरीर हमेशा ऊर्जावान होना चाहिए तथा थकावट और आलस्य जैसे अवगुण आपके शरीर में नहीं होना चाहिए।
1: इसके बाद आपको शरीर की बनावट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जिम जाकर सिक्स पैक बनाएं, अपितु ना अधिक मोटा ना अधिक दुबला होना चाहिए। आप नियमित संतुलित आहार लेकर एवं नियमित व्यायाम करके संतुलित शरीर का विकास कर सकते हैं।
0: सुंदरता किसी को भी आकर्षित करने का केंद्र होती है। इसमें शरीर के काले और गोरे रंग का महत्व नहीं होता है। इसके लिए आपको शरीर के नाजुक अंगों जैसे आंख, बाल, नाखून, त्वचा आदि का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके पश्चात साफ, स्वच्छ, कंफर्टेबल और फैशन के अनुसार कपड़े पहने, लेकिन फैशन की आड़ में फटे हुए और बेशर्मी वाले कपड़ों को परहेज करें, क्योंकि इससे आपका व्यक्तित्व नीचा होता है। आपको बता देना चाहते हैं, दूसरा गुण आपके अंदर उत्तम विचार होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के सामने अपनी बात को रखते हैं तो आपके विचारों को देखा जाता है कि आपके विचार किस तरीके से हैं।
1: बिल्कुल, और विचारों से ताकतवर कोई और हथियार नहीं होता, यानी कि विचारों से ज्यादा ताकतवर कोई और दूसरा हथियार नहीं होता है। विचारों की वजह से ही व्यक्ति को नई दिशा मिलती है और यह कुछ भी करवा सकती है। अच्छे वातावरण में रहने से, अच्छी किताबें पढ़ने से, खुली जगह में वायु का सेवन करते रहने से सरलता से ही हमारे मन को अच्छे परिणाम मिलते हैं और वे परिणाम ही हमारे विचारों का निर्माण करते हैं।
0: इसके अलावा आपका विद्यालय उत्तम हो, जिससे आपको उत्तम शिक्षा मिलेगी और आप में उत्तम विचारों का समावेश होगा, और साथ साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए विचारों का अहम योगदान रहता है। इसके लिए आपके विचार अच्छे होना चाहिए। जब आपके विचार अच्छे होंगे तो सामने वाला या इंटरव्यू लेने वाला आपसे प्रभावित होगा और आपकी आत्मविश्वास को जगाएगा। आत्मविश्वास का होना ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है और एक अच्छी बात होती है कि आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि हम ये काम को कर लेंगे।
1: बिल्कुल, यदि आपके अंदर किसी काम में पूर्ण योग्यता होने के बावजूद भी उस काम को लेकर से इनकार कर देता है या आपको किसी विषय का पर्याप्त ज्ञान होने के बाद भी उसे किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हो, इसका प्रमुख कारण है आत्मविश्वास की कमी। जी हाँ श्रोताओं, इसलिए आत्मविश्वास हासिल करने के लिए अपने गुण अवगुण का विश्लेषण कर अपने व्यक्तित्व के अंदर मौजूद कमियों को दूर करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अधिक शर्मीले हैं, हीन भावना से ग्रस्त हैं, अभिमानी हैं या आप में किसी का भय है तो आपको इन कमियों को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। जबकि किसी इंसान के अंदर मौजूद गुणों से ही उसका व्यक्तित्व बनता है, इसमें आत्मविश्वास बहुत ही आवश्यक है। युवा पीढ़ी में इस गुण का होना बहुत जरूरी है क्योंकि उनका भविष्य सामने होता है। अतः आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपके भीतर आत्मसम्मान, प्रतियोगिता में भाग लेना जैसे गुणों का समावेश

0: स्पेस होना चाहिए जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बेहतर है।
1: दोस्तों, और भी बातें हैं जो आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे कि विनम्रता अपनाएं, बातचीत की कला, सुनना या कम बोलना सीखें। ये सारी बातचीत जो रहती है आपके व्यक्तित्व को निखारती है। ये बातचीत आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत जरूरी रहती है। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम एक अच्छे से लोकगीत को सुन लेते हैं। इसके बाद बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे और भी व्यक्तित्व विकास के जो टिप्स हैं, व्यक्तित्व विकास के गुण होते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में।
0: तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं यहाँ पर एक बढ़िया सा लोकगीत।

0: साथ एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में, जहां पर हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व विकास की। अभी हमने बात की श्रोताओं के आत्मविश्वास होना चाहिए हमें खुद पर। आगे हम बात करेंगे कि विनम्रता अपनाएं। बिल्कुल श्रोताओं, आपकी वाणी में मधुरता का स्वर होना चाहिए, जिससे आप अनगिनत दोस्त बना सकते हैं। इसके ठीक उल्टा अनगिनत दुश्मन भी आप। इसलिए आप कभी भी अपनी शिक्षा प्रतिभा योग्यता को ओढ़ते हुए किसी से बात ना करें, अपितु ऐसे बने रहें कि हर कोई आपसे मिलने की एवं बात करने की चाह रखे। इसके साथ ही साथ आप गुस्से पर काबू रखें और किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक ना बनाएं। मजाक उसी का उड़ाने में मजा है जो अपने को आपसे ज्यादा ताकतवर समझता है। इसी गुण से व्यक्तित्व विकास में इजाफा होता है।
1: ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि विनम्रता अपनाए के साथ साथ हमें बातचीत की कला भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के सामने बातचीत करते हैं तभी आपका व्यक्तित्व पहचानता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो आप किसी साधारण व्यक्ति से बात कर रहे हैं या किसी पोस्ट ग्रेजुएशन व्यक्ति से आपको बातचीत करने के दौरान बार बार आंखें मटकाना, शर्माना, अटकना और मुख मुद्रा बिगाड़ने से बचना चाहिए, और अपनी बॉडी लैंग्वेज का उपयोग कर नेत्र संपर्क बनाए रखना चाहिए। बहुत बड़ी बातचीत होती है, ये एक कला होती है व्यक्तित्व विकास की, ये कला होती है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, क्योंकि बातचीत के वक्त आपकी एक निश्चल मनमोहक प्यारी मुस्कान किसी भी व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालती है। लेकिन आपकी यह मुस्कान नकली या बनावटी ना लगे, यह नेचुरल रूप से शरीर के अंदर से आनी चाहिए। आपकी एक मुस्कान सामने वाले व्यक्ति के अंदर आपकी सैकड़ों तारीफें बयां कर देती हैं। इसलिए आप मुस्कुराने का प्रयत्न कीजिए। इसके अलावा आप अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से मिलते हैं और कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। इसे रचनात्मक कहते हैं। और आप शायरी, लघु कथा, घटना, दुर्घटना, कहावत आदि से अपनी बातचीत में रचनात्मकता शामिल कर बेहतर प्रभाव आप डाल सकते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे और कई सारे ऐसे टिप्स हैं श्रोताओं, जो आप सबके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाले हैं। एवं यहाँ पर हम बात करेंगे सुनना और कम बोलना सीखे, क्योंकि कई बार होता क्या है श्रोताओं के, हम बोलते जाते हैं हम सामने वाले की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर यह बहुत अच्छी बात है कि हमें सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। यह वास्तविकता हमारी जिंदगी से करीब करीब समाप्त हो गई है। आज हम किसी व्यक्ति की बात कम सुनते हैं पर ज्यादा बोलते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसकी बातों पर पूरा फोकस करें, और जिस विषय पर चर्चा हो रही हो उससे संबंधित अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछें।
1: वार्तालाप के दौरान आप बीच में दखल ना दें और ना ही रुकावट बने, समझदारी से बात करें एवं बीच बीच में आप अपना सिर हिलाएं और जी हाँ अवश्य कहें, जिससे सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति की बात गंभीरता से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। हालांकि आप जितना हो सके चुप रहें, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले और खुद की तारीफ करने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। आप एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति बनिए, जो जरूरत के वक्त अपनी बात को व्यक्त कर सके। चुप रहने वाले व्यक्ति या कम बोलने वाले व्यक्ति से हमेशा लोग बातचीत करने के लिए उत्सुक रहते हैं, और इसी वजह से कोई भी व्यक्ति बेहद आकर्षित होकर उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है जो व्यक्तित्व विकास के लिए एक अच्छा गुण रखता है। तो ये बातें रहती हैं जो आपके व्यक्तित्व विकास को निखारने में बहुत ज्यादा जरूरी रहती हैं, क्योंकि इन बातों के बारे में आप यदि आप सोचते हैं, ये बातें आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। आप सामने वाले को माफ करना या माफी मांगना सीखें, ये भी एक तो व्यक्तित्व विकास का एक पहलू रहता है। इसका भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी अपमानित आपको करता है, अपशब्द कहता है, बुरा व्यवहार करता है, तो आपके मन में उस व्यक्ति के लिए नफरत पैदा हो जाती है। ऐसा होना ही नेचुरल है। लेकिन कुछ समय बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है, वह आपसे माफी मांगने आता है और आप उसे मुंह मत मोड़िए और उसे तुरंत माफ कर दीजिए, क्योंकि वही व्यक्ति माफ करता है जो अपने तन मन से घृणा, बुराई, कलेश को दूर करना चाहता है, अपने दिल में पवित्र करना चाहता है। इसके ठीक उल्टा, यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप माफी मांगने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि जिसमें सीखने की असीमित क्षमताएं होती हैं वही व्यक्ति माफी मांगता है, और माफी मांगने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है जो सर्वोच्च व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज्यादा अहम रहता है।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा या किसी और के द्वारा कोई गलती हुई है और अगर सामने वाला आपसे माफी मांगने के लिए आ रहा है तो उसे माफ भी कर दें। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप भी उससे माफी मांग सकते हैं। ये हमारे एक व्यक्तित्व विकास की बहुत अच्छी कड़ी होती है जिस पर हम कायम रह सकते हैं। आगे अगर हम बात करें सकारात्मक नजरिया, यानी कि पॉजिटिव सोच हमेशा बना के रखें। सकारात्मक नजरिए से आशा यह है कि इस जीवन में अपने कर्तव्यों, निर्णयों, संकटों, उलझनों, रुकावटों, संघर्षों, दैनिक व्यवहारों तथा अन्य किसी भी कार्य में कामयाब होने के लिए आपका नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। अगर आप निराशा से आशा प्राप्त करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं तथा जिंदगी की समस्याओं से विचलित ना होकर समस्याओं का समाधान करते हैं, हर बुराई में अच्छाई की तलाश करते हैं, तो आपका नजरिया सकारात्मक है। इसके ठीक उल्टा अगर जाएंगे तो आप नकारात्मक नजरिए का शिकार

0: होंगे जो आपके वर्तमान एवं भविष्य के लिए खतरनाक है। नजरिया बुरा होने पर आपको सिर्फ कुछ समय के लिए खुशी मिलती है तथा लंबी खुशी के लिए आपको सकारात्मक नजरिया विकसित करना होगा, जिससे आप लंबे समय तक खुद को खुश रख सकते हैं और यही खुशी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में निखार लाएगी।
1: ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि सकारात्मक आपका नजरिया है यानी पॉजिटिव आउटलुक है आपका, तो आप दूसरों को खुश रख सकते हैं और उनकी खुशी में ही आपकी खुशी रहती है। इससे आपका ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है यानी व्यक्तित्व जो विकास रहता है वो उसमें एक अहम कड़ी मिलती है। सीखना बंद तो जीतना बंद, यानी आप पता होगा क्योंकि व्यक्तित्व विकास में ये होना बहुत जरूरी है। आपने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के शो कौन बनेगा करोड़पति को सुना ही होगा आपने। सीखना बंद तो जितना बंद ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीखता वही है जिसमें जीतने की उमंग होती है और जिसका दिल जवान होता है, जबकि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। सीखना कभी ना खत्म होने की प्रक्रिया है, इसलिए सीखने के दौरान गलतियां ना करें और दूसरों की गलतियों से सीखें और अपनी गलतियों में सुधार करें।
0: इसके साथ साथ लगातार सीखने की अनवरत कला से ही आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई जानकारियां हासिल करते हैं और इसी कला से आपका व्यक्तित्व विकास होता है।
1: और आखिरी है, हम आपको बता देना चाहते हैं ये कार में योग्यता, ये भी आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार एक निश्चय विषय या क्षेत्र का चुनाव कर उस पर अग्रणित रहें और आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करें। जिस विषय को आपने चुना है सबसे पहले उसमें गहराई तक जाएं, उसके बारे में जितना ज्यादा हो सके ज्ञान प्राप्त करें। इससे हकीकत में यह होगा कि मान लीजिए अगर आपसे किसी ने आपके कार्य से संबंधित कुछ सवाल किए लेकिन आप उन सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं तो इससे आपका व्यक्तित्व लो होता है यानी कमजोर होता है। अतः आप अपने काम में होनहार बनिए। इसके अलावा आपको देश विदेश के बारे में मनोरंजन एवं ज्ञानपूर्ण जानकारी रखना अन्य लोगों के मध्य आपको लोकप्रिय बनाता है।
0: आगे हम बात करेंगे अगर निष्कर्ष की, तो इस बात में हम आपको जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक में आने वाले हर वह खास टिप्स बताते हैं जिससे आप अपनी कमियों को आसानी से दूर कर सकते हैं।
1: यदि आपने अपने जीवन में यह खास टिप्स नियमित आधार से अपनी दिनचर्या में उतार लिए तो यकीनन आप खास पर्सनालिटी डेवलपमेंट के धनी बन जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको यह लेख पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स, व्यक्तित्व विकास के टिप्स आपको बेहद पसंद आए होंगे। आने वाले समय में हम आपको और भी व्यक्तित्व विकास से जुड़ी बातचीत हम लेकर आएंगे। साथियों, इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो आपको ये जानकारी हम जो दे रहे थे व्यक्तित्व विकास के बारे में, जो आपके लिए बहुत जरूरी रहती है जब आप किसी के पास बैठते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो व्यक्तित्व विकास होना बहुत जरूरी रहता है हमारे युवा साथियों के लिए।
0: बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कि जो भी टिप्स हमने आप सबको बताए हैं उन पर आप काम करेंगे, यानी कि अपने व्यक्तित्व विकास में उनका उपयोग जरूर आप करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगर साथियों आप इन सबका उपयोग कर रहे हैं या फिर आपने इस कार्यक्रम को सुनकर थोड़ा सा भी अपने व्यक्तित्व में थोड़ा सा बदलाव किया है तो हमें जरूर बताइएगा फोन के माध्यम से, या फिर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जरूर कार्यक्रम में जुड़ के और सवाल पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हमारा नंबर है
1: 9425147726।
0: श्रोताओं, जब कभी ये नंबर अगर ना लगे तो आप व्हाट्सएप पर इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर ये कॉल लग सकता है। और आपको एक और बात बता देना चाहते हैं, हर कार्यक्रम में जो हम बता रहे हैं कि अब अपना रेडियो बुंदेलखंड सिर्फ अपने रेडियो सेट पर ही सीमित नहीं है, अब ये ऐप के माध्यम से हर जगह उपलब्ध हो चुका है। तो हमारे और भी जो श्रोता साथी हैं जिनको रेडियो बुंदेलखंड सुनने में परेशानी होती है उनको आप इस ऐप की जानकारी जरूर दीजिएगा ताकि वो आसानी से रेडियो बुंदेलखंड को अपने क्षेत्र में सुन सके।
1: तो अब हमारा जाने का समय होता है, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात।
0: तब तक के लिए नमस्कार।
1: और चलते चलते आप सुनो इस प्यारे से लोकगीत को।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाली सभी सखियों को

0: यानी कि वर्षा, दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और साथ में हमारे सखियों को बता देना चाहते हैं कि हम उनका पसंदीदा जो कार्यक्रम है हेलो सहेली वो लेकर आ गए हैं। और आप इस समय अपने अपने आसपास की जो भी बहनें हैं उनको भी बिठा लीजिए ताकि उनको भी पता चले कि आपकी आवाज जो है वो रेडियो पर आ रही है, और रेडियो पर आवाज अगर आ रही है आपकी पसंद का गीत भी आएगा। तो बिल्कुल सखियों, आपको बता देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में अगर आप शामिल होना चाहती हैं और अपने मनपसंद लोकगीत की फरमाइश करना चाहती हैं तो हमें शुक्रवार के दिन कॉल करें हमारे नंबर 94-25-14-17-26 पर, और कॉल करने के बाद आप अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकती हैं जिसको आप शनिवार को सुन सकती हैं। तो आइए, हमारे साथ कुछ सखियां हैं जिन्होंने अपनी फरमाइश करी है और सुनते हैं उनकी मनपसंद फरमाइश को। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, को बोल रही?
1: पार्वती वंश का सजनपुरा से।
0: बिल्कुल पार्वती जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। बताओ का क्या बचाती हूँ।
1: दीदी का हमें एक वो सुना दो, एक गीत।
0: हाँ, कौन सा सुना दे?
1: खेल जाती हूँ तुम्हारी नगर जावे, भाई दीवानी बारी उमारी जावे,
0: संध्या सरगम को है वो। हाँ बिल्कुल, यानी नोना हम जरूर सुनवा दें आपको। और बताओ पार्वती जी, प्रोग्राम कैसे लग रहा है रेडियो के?
1: प्रोग्राम बहुत अच्छे लग रहा है दीदी।
0: तो ठीक है पार्वती जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको जरूर सुनवा रहे हैं आपकी पसंद को जो लोकगीत। ठीक है
1: दीदी, सुना।

0: सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: का नाम?
1: पान कुआ।
0: कितने से बोल रही?
1: मस्तापुर से।
0: अच्छा पान कुआ जी, तो मस्तापुर में का हो रहा आजकल?
1: आज लोकगीत अपनी पसंद को सुना।
0: ठीक है, तो हम आपको जो सुनवा रहे हैं अपनी पसंद को लोकगीत। ठीक है,
1: हाँ
0: नमस्कार।

0: हेलो सहेली,
1: को बोल रही?
0: उमा देवी बोल रहा है मस्त आपसे।
1: ठीक है तो आज बताओ कौन सा लोग सुनने आपको?
0: हमें तू मसाला तो मज्जा।
1: अरे वाह क्या बात है, तू
0: पंचांगेत और आनो। हाँ वही लोग सुनने में
1: बहुत बढ़िया, तो हम आपको जरूर सुनवाए जो लोग। ठीक है
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रही थी हमारी सखियों की मनपसंद फरमाइश को, और क्योंकि अब हमारा समय भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो हमारी जो सखियां इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई हैं, अगर वो अगले कार्यक्रम में शामिल होना चाहती हैं तो हमें जरूर कॉल करें हमारे नंबर 94-25-14-17-26 पर। जी हाँ सखियों, और आपको कॉल करना है शुक्रवार के दिन। तो हेलो सहेली कार्यक्रम से जाने की दीजिए अपनी दोस्त वर्षा को आज्ञा, फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, जैसे कार्यक्रम को समय भाव है सो हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम छिरिया बाड़ा। जी हाँ दोस्तों, सो साथियों, छिरिया बाड़ा कार्यक्रम में अपन बात करते हैं खेती किसानी के संगे संगे पशुपालन की। सो दोस्तों, आज अपन ई कार्यक्रम में पशुपालन की नस्लन को और पशुअन के पोषण पे उनके आहार पे अपन बातचीत करें। दोस्तों, बात करें पशु आहार शब्द, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता के पशु की बात हो रही है। और पशु आहार यानी कि पशुओं की 24 घंटे में दी जाने वाली आहार, ऐसा आहार जो पशुओं को आवश्यक पोषक तत्वों, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, विटामिन युक्त का उच्च अनुपात और उचित मात्रा में दी जाने वाली आहार, जो पशु की बढ़वार स्वास्थ्य, अधिक दुग्ध देने में उत्तम क्षमता बनाए रखें। सो दोस्तों, पशुओं के लाने अपने आहार पे आगे भी बात करें और उनकी नस्ल पे बात करें। सो ये बातन के संगे संगे आप पहला एक बढ़िया से गीत को सुन लेते, फिर आगे कार्यक्रम में। जी, गीत को गा रहे हैं रामाधीन आर और रेखा राजी।

0: लाओ मोए कंगना जैसे पेरे देवरानी। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है, गीत को गा रहे थे रामाधीन आर और रेखा राजी। अब दोस्तों अपन चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। तो दोस्तों आज के समय में पशुपालन एक बहुत अच्छी उभरता हुआ व्यवसाय है।
1: जी हाँ,
0: पशुपालन भी कृषि व्यवसाय की एक शाखा है जिसमें कई प्रकार के पशुओं को उनके दूध व अंडे व अन्य उत्पादों के लिए पाला जाता है। पशुपालन के लिए आपको पशुपालन की जानकारी होना अति आवश्यक है। यहाँ पर आप जानेंगे कुछ टिप्स जिसे आप पशुपालन जैसे कि भैंस मुर्गी भेड़ बकरी पालन आदि अच्छे से कर सके, अधिक मुनाफा कमा सके। सो दोस्तों अपन सबसे पहला अपने पशु की नस्ल को ध्यान से चुने।
1: जी हाँ,
0: अगर अपन कोनो सो भी पशु पाल रहे तो उनकी सबसे पहला नस्ल को ध्यान में रखें। खास तौर पर भैंस और बकरी पालन के व्यवसाय में जहां आपको पशु का दुग्ध व मांस बेचकर मुनाफा होता है, आपको अपने पशु की नस्ल का चुनाव काफी ध्यान से करना चाहिए। हर नस्ल का पशु अच्छा एवं ज्यादा दूध नहीं दे सकता, इसलिए आप पशु की नस्ल चुनते समय सावधानी बरते सो अपने पशु को अच्छे पोषण वाला आहार ही दें। अगर आप भी पशुपालन व्यवसाय से जुड़ने का मन बना रहे हैं तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि यदि आप अपने पशु को अच्छा चारा व दाना पानी देते हैं तो उससे न केवल उसकी सेहत अच्छी रहती है बल्कि पशु की उत्पादक क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। पशुपालन करते समय आप अपने पशु को सही मात्रा में पोषण वाला आहार ही खिलाएं, जिससे आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको मुनाफा भी अधिक प्राप्त होगा। अब दोस्तों बात आती है कि अपने पशु का आवास स्वच्छ रखें।
1: जी हाँ,
0: अपने पशु का जो आवास है उसे साफ और स्वच्छ रखें। पशु का आवास जितना अधिक स्वच्छ होगा उतना ही आपके पशु को बीमारी का खतरा कम रहता है। पशुओं को नियमित रूप से नहलाएं और उनके आवास के लिए किसी ऊंची जगह का चयन करें जिससे बारिश एवं नालियों का पानी मलमूत्र इत्यादि से वह बाहर रह सके। आपके पशु के आवास में कम से कम 2 से 3 जगह से अच्छी धूप आनी चाहिए। आवास में धूप के आने से न केवल वहां के कीटाणु मरते हैं बल्कि आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पशु के लिए पानी की सुविधा। पशु आवास में पशु के लिए पानी एवं खाने की उपलब्धता का भी ध्यान रखें। डेयरी के कामों में वैसे भी पानी की काफी जरूरत होती है और खास तौर पर गर्मी के मौसम में आपको पशु के लिए पानी उचित मात्रा में जरूर रखना चाहिए। पशु के स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखें। पशुपालन में अपने पशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पशुपालन में सबसे जरूरी बात यह होती है कि आप अपने पशु को सही समय आने पर उसे सभी आवश्यक टीके लगवाएं, उसको लू लगने से बचाएं, चारा पर्याप्त मात्रा में दें ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। पशु की नियमित रूप से डॉक्टरों से जांच कराते रहें। अगर आपका पशु कभी बीमार होता है या आपको वह कुछ सुस्त दिखाई देता है तो तुरंत उसे जानवरों के डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा हो सकता है कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो। कभी भी जानवर के बीमार होने पर खुद उसका इलाज करने की कोशिश ना करें, यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अपने पशु को अच्छा मुनाफा होने पर ही बेचें। अपने पशु को बेचने के लिए सही समय आने का इंतजार करें। अच्छी नस्ल वाले पशु को सही समय आने पर काफी अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। जैसे कि अगर आप बकरी पालन करते हैं तो बकरी ईद के समय पर अपनी बकरी को अच्छे मुनाफे पर भी बेच सकते हैं। पशु उत्पादों में मिलावट ना करें। अगर आप बाजार में पशु का दूध बेचना चाहते हैं तो आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है, पर अगर आप अपने पशु उत्पाद में पानी या किसी और चीज की

मिलावट करेंगे तो वह आपके व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है। पशु उत्पाद में मिलावट करने से आपका मुनाफा तो बढ़ जाता है, लेकिन मिलावट करने पर आपके ग्राहक आपके उत्पाद को नापसंद करने लगते हैं व आपके खिलाफ शिकायत भी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर आप सघन पशुपालन या आश पशुपालन करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी उचित ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप जानवरों से होने वाले रोगों के शिकार बन सकते हैं। टीबी जैसे रोगों से एक उदाहरण है। जानवरों के मल में पैदा होने वाले बैक्टीरिया और उनमें बैठने वाली मक्खियां आपको बहुत बीमार कर सकती हैं। पशुपालन की सरकारी सेवाओं का भी लाभ उठाएं। सरकार की तरफ से कृषि उद्धार के लिए किसान हेल्पलाइन जैसी कई सेवाएं शुरू की गई हैं। आप इन सेवाओं का लाभ अपनी भाषा में मुफ्त उठा सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटा सातों दिन चालू रहती है। तो कभी अगर आपको पशुपालन से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो देर किए बिना किसान हेल्पलाइन पर आप कॉल कर सकते हैं। किसान हेल्पलाइन नंबर है 1551 या 1800। सो देखो दोस्तों, जो अपन ने पशुपालन से संबंधित जानकारी जानी है, अब एक क्रम में अपन एक गीत को सुनत और गीत को आनंद ले। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता भैया के संग में। आओ दोस्तों, सुनत ही गीत को जिया गा रहे हैं राजकुमार त्यागी जी और अमूल अहरवाल।

बिल्कुल दोस्तों, जो 3 दिना को मिला री उर्जे है हंस अकेला। देखो कितना अच्छा जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो। ये गीत खुंगा रहते अमूल अहरवाल जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों आज के ये कार्यक्रम छिड़कियावाड़ा से आपके दोस्त मातदिन भैया को जाबे को समय हो गए है, सो हमें दो ये कार्यक्रम से जाबे की अनुमति। अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात ये कार्यक्रम में ए बेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों, कार्यक्रम विधा बुंदेली में अपन एक विधा को सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों, आज के अपने कार्यक्रम विधा बुंदेली में अपन सुने विधा श्रृंगार गीत को और श्रृंगार गीतन को आनंद ले हैं। दोस्तों, जो श्रृंगार गीत एक बहुत ही अच्छी विधा है जिमें नारी के श्रृंगार को वर्णन करो जात। सो दोस्तों, आप हम आप सब जन को सुनाओ थे जो श्रृंगार गीत कौन प्रकार से गाए जाते हैं। सो सबसे पहले गीत सुनाते हैं जी, ये गा रहे हैं रामकुमार प्रजापति जी। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।
1: हाँ, तो आप एक श्रृंगार सुना रहे हैं। बुंदेलखंड में जब श्रृंगार करके नायिका निकले थे, देखने में मन ललचा के देखा ही रहे। और हम जब अपने घर से मतलब श्रीमती खन लुआ के आ रहे थे, जैसे लुआ के आए तो हमारे मित्र मिल गए और उनने पूछी के तीन चार जने आ रही, उनमें से कौन है तुम्हारी धर्म पत्नी। सामने कही

बोले कि ऐसे में नहीं आ रही समझ में, बताओ तुम तो इस तक। हमने कहीं देखो श्रृंगार की बात है कि

मंत्र बोले के देखो, ऐसे में भी समझ में नहीं आ रहा हुआ, कर दो नहीं दो जनी तेरे। हमने की नहीं, जी ने बना दही कर।

जा बताओ पीली साड़ी वाली यहाँ, हमने की नहीं, बोले नीली साड़ी वाली, बोले नहीं, बोले फिर कौन, हमने की है, अरे गंजले ठाकुर दही हम ही खा, गंजले ठाकुर दही हम ही खा, ची

0: बिल्कुल दोस्तों, मटकत आ रही लटकत आ रही कमर में कर धोनी मोरी बेला कली। देखो दोस्तों कितनों प्यारो जो गीत अपन सब जनन ने सुनो है, जो सिंगार गीत है। और दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया राम कुमार प्रजापति जी। अब दोस्तों आ सुनते हैं अगले साथियों के गायब है सिंगार गीत को।
1: नई नई दुल्हन सज गई है न घुंघटा में।

दोस्तों, गोरे हैं गाल दुई होंठ लाल रेशम से वाल कारे कारे। देखो कितना प्यारा जो श्रृंगार गीत अपन सब जनों ने सुनो है, इस श्रृंगार गीत को आनंद लो है, ई गीत को गा रहे थे रामाधीन आर जी। सो दोस्तों, रामाधीन भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इनने तो अच्छो बढ़िया श्रृंगार गीत गा के अपन सब जन को सुनाओ है। अब एक क्रम में फिर से सुनते हैं अगले साथी इनके गाय भाई श्रृंगार गीत को और लेते हैं उनके गीत को आनंद। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

काले लाल सिंगार है, सिंगार भोसते देखे हैं सुने हैं आपने, जो तो लाल है केवल के लाल लाल चोली और चूनर है लाल, लाल लाल चोली और चूनर है लाल, लाल लाल साया पे, लाल लाल साया पे।

बात है के हर पावन हाँ हर पावन माहौर जो लगो लाल लाल हर पावन माहौर जो लगो लाल लाल।

लागो है नीको जो लाल बूंदा। देखो कितना प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, सिंगार गीत को आनंद लो है। इस सिंगार गीत को गा रहे थे भैया राम कुमार प्रजापति जी। अब दोस्तों राम कुमार भैया जी के गीत के बाद आप फिर से सुनते हैं अगले साथी के गायब है गीत को।

0: बिल्कुल दोस्तों, भौजी सजी मूर मोटर सी करसु लव सिंगार मनोरंजन लिभोरा। देखो कितना प्यारा जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, इस सिंगार गीत को आनंद लो है। इस सिंगार गीत को गा रहे थे भैया राम सुमन अहरवार जी। सो आओ दोस्तों, फैशन सुनते हैं अगले साथी इनके गाय भाई गीत को।
1: अरे जा गोरी

बिछिया बजना हाथन पेरे नए नए कंगना पाऊंगरिया बिछिया बजना हाथन पेरे नए नए कंगना कान में चमके बाई अलिया नोनी तुहे ना तुम्हरिया मरिया मरियादार

फूल कंगन में झूले गोरी के गालन में कंद फूल कानन में झूले गोरी के गालन खोचू में नैनन कल्ला ओठन लाली चाल समा के दान राली गली में सोहे हार

चमके पुणे जे सो चंदा चमके बूंदा लाल भाल पे दमके पुणे जे सो चंदा चमके

बिल्कुल दोस्तों, जागोरी बुंदेलखंड की अजब करे सिंगार लगत देखत रहिए। तो देखो कितनो प्यारो जो सिंगार गीत अपन सब जनन ने सुनो है, इस सिंगार गीत को आनंद लाओ है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया खूबचंद कुशवाहा जी। आप दोस्तों खूबचंद कुशवाहा जी के गीत के बाद आप फिर से सुनते हैं अगले साथियों के गाय भाई गीत को और लेते हैं उनके गीत को आनंद। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

देखे कजरवा कारो के गोरी धना जादू सो डारो। देखो कितना प्यारो जो श्रृंगार गीत अपन सब जन ने सुनो है, इको आनंद लो है। अब दोस्तों ये गीत के संगे संगे हम बता देवे की गीत को गा रहे थे भैया राम सुमन अहरवार जी। अब दोस्तों ये कार्यक्रम से अपने दोस्त माता दीन भैया को अब जाबे को समय से हो रहा है। सो दोस्तों अपने दोस्त माता दीन भैया को कार्यक्रम से जाबे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात है कार्यक्रम में ये बेरा पे। अब अपने माता दीन भैया को जाबे की अनुमति। नमस्कार।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

और इन वेक्षण में अरे क्या क्या लगे हैं, अरे निपुण, अरे नि

0: करी उतार दियो गगरी लाला दे होने के तुम्हारे के हम आई सुनो
1: के गगरी तोरी भौजी जबई उतर है गगरी तोरी भौजी जबई

हर खुशी रहे जा राज दुलारी, अरे खुशी रहे जा राज दुलारी, अरे कुल को

लड़का बिटिया तुम्हें राम ने दई है, हम सबको आनंद भइए। ऐसे तो कह रहे कि गगरी उतार दिखाए।

ये तो हम देखो आपसे कह रहे हैं।

0: कमाओ के वो है, तुम कह रही के तू बेने है, हमें नेक में जो नहीं जाने मालूम का जाने क्या वो है।
1: प्राणन से प्यारी हो जाई, ध्यान से सुनियो बात हमारी, ध्यान से सुनियो बात हमारी, काद हो गगरी।

0: अब जा करे जे जाने के जब बिटिया हम सब फस रहे और दोनों कुलन की शान बढ़ावे जो ही हमें एकदम से नेगे में जाने और कछु नहीं जाने और
1: अरे खुशी रहे जाराज दुलारो कुल को है उजियारो अरे खुशी रहे जो राज

0: रात नन्हे दिलों की। टिंग टोंग, दरवाजे पर नहीं आज एक घंटी आपके मोबाइल पर बजी है। एक लिंक आया, एक अनजान व्यक्ति का मैसेज आया, कोई ऑनलाइन दोस्त बना और आपने बिना कुछ सोचे समझे बस क्लिक कर दिया। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने थिंक ट्वाइस किया? नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोताओं का मैं आरजे हर्ष बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा की। आज इंटरनेट बच्चों की पढ़ाई, मनोरंजन और दोस्तों से जुड़ने का बड़ा माध्यम बना हुआ है। लेकिन इसी दुनिया में कुछ खतरे ऐसे भी हैं जिनसे बचने के लिए बच्चों को सिर्फ इंटरनेट चलाना नहीं बल्कि सुरक्षित तरीके से इंटरनेट चलाना सीखना भी उतना ही जरूरी है। इसी सोच के साथ शुरू हुआ है टिंग टोंग थिंक ट्वाइस अभियान, यानी ऑनलाइन कुछ भी करने से पहले रुकिए, सोचिए और फिर कदम उठाइए। तो आइए आज बात करते हैं बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए बच्चों, माता पिता, स्कूल और पूरे समुदाय की क्या भूमिका हो सकती है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ के तौर पे प्रोग्राम हेड जया सिंह जी। और मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
0: बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम, हमारा प्रश्न आपसे ये है कि टिंग टोंग थिंक ट्वाइस अभियान शुरू करने की जरूरत क्यों महसूस हुई और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिहाज से इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: थैंक यू। आई थिंक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न से आपने शुरू किया है। जैसा हम सब जानते हैं, इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। चाहे आप हो, मैं हूँ, बच्चे हो, कोई भी हो, बिना इंटरनेट की शायद जिंदगी जैसे रुक सी जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब आप बच्चों की बात करते हैं तो इंटरनेट सिर्फ पढ़ाई, मनोरंजन इसी का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज की डेट में हमें ये लगता है कि इंटरनेट कहीं उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। इसलिए हमको ये देखने की जरूरत है कि बच्चों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल जहाँ बहुत सारे अवसर लेकर के आया है, वहीं बहुत सारी खतरे भी हमें नजर आते हैं इंटरनेट से बच्चों के साथ जुड़ते हुए। अगर आप भारत की बात करें तो भारत में 18 साल से कम उम्र के 11.3 करोड़ बच्चे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये जो आंकड़ा है ये बताता है कि जो टोटल इंटरनेट यूजर्स हैं हमारी कंट्री में, उसमें से लगभग 14% बच्चे हैं। तो इतना बड़ा आंकड़े की जब हम बात करते हैं तो हमें लगा कि इस तरीके की जानकारी बहुत जरूरी है कि बच्चों तक जाए कि इंटरनेट सेफ्टी क्या है। और जब हम टिंग टोंग थिंक टॉयज की बात कर रहे हैं तो दोबारा सोचें, ये इसीलिए कहा गया कि इंटरनेट का इस्तेमाल धड़ाधड़ रीले देखने और स्क्रॉल करने के लिए नहीं है, इसका इस्तेमाल ये भी है कि आप कुछ भी कर रहे हो अपना दिमाग खुला रखें और सोच करके ही इंटरनेट इस्तेमाल करें। तो इसीलिए ये वाली हमने कैंपेन का शुरुआत की है।
0: जी मैम, जैसे कि जो है कि जी बच्चों की पढ़ाई मनोरंजन के लिए इंटरनेट पर काफी समय बताते हैं, तो ऑनलाइन उन्हें किन प्रमुख खतरों या जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है?
1: ऑनलाइन देखिए, जैसे ही आप इंटरनेट पे जाते हैं आप क्या करते हैं इंटरनेट से, या तो अगर बच्चों की हम बात करें, या तो वो बोलते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर वो बोलते हैं कि हम गेम्स खेल रहे हैं, या वो बोलते हैं कि हम कोई वीडियोस देख रहे हैं। तो ये सारे ही समय पे इंटरनेट के खतरे मौजूद होते हैं, सारे ही समय पे अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद है, लेकिन हम इस वक्त खतरों की बात कर रहे हैं। तो जब आप बात कर रहे हैं चाहे गेम्स ही खेलने की, ज्यादातर बच्चे गेम्स खेलने जाते हैं, तो वहां पर आजकल जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत सारे बाहर के यूजर्स भी उस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं। बच्चे ना जानते हुए भी अनजान लोगों से मित्रता बढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद ना जानते हुए भी उनके और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने लगते हैं, बिना सोचे समझे उनके भेजे हुए लिंक्स को क्लिक करने लगते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सिर्फ, और इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि ऐसी जो भी बातें हैं हमें एक चीज अपने दिमाग में याद रखनी चाहिए कि इंटरनेट डरने की चीज नहीं है। इंटरनेट से बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, बहुत सारे बहुत जरूरी माध्यम है ये, क्योंकि बहुत सारे चीजों में बच्चों को ये सिखाता भी है, बहुत सारी चीजों में बच्चों को भी जानकारियां भी मिलती हैं। तो इसलिए सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, और सेफ्टी अगर हम रखते हैं तो इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो इसीलिए हमारी ये कैंपेन थिंक टॉन्ग थिंक टॉइस वो यही कहती है कि सोचें, इस्तेमाल करें, लेकिन एक बार सोचें, रुके, फिर इस्तेमाल करें।
0: तो मैम जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो इसमें मैम बच्चों को किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने, संदिग्ध लिंक पर...

0: बन जाता है। किसी
1: जी
0: ने आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी या आपको लगा कि आप किसी गेम के द्वारा किसी से आप जुड़ गए हैं और फिर वो व्यक्ति आपसे धीरे धीरे दोस्ती करने लगा, तो उससे क्या होता है कि वहां से खतरा शुरू होता है जब आप बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते
1: जी
0: हैं,
1: मैम
0: क्योंकि विश्वास से ही उसकी भेजी हुई चीजों को लुक्स को ओपन करने लगते हैं। या फिर वो व्यक्ति जब आपसे कहता है कि अपनी कोई फोटो भेजो, अपनी जानकारी भेजो, तो उसी विश्वास पर आप अपनी जानकारियां भी उस व्यक्ति को देने लगते हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत, तब वो खतरा इंटरनेट का बढ़ जाता है।
1: जी
0: और इसलिए जो कुछ बातें हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि आप तुरंत किसी पे विश्वास ना करें। जो भी
1: बिल्कुल
0: कोई आपको इंटरनेट पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है या जुड़ने की बात कर रहा है, तुरंत विश्वास ना करें। ये
1: बिल्कुल
0: बच्चों और बड़ों सभी के लिए इंपॉर्टेंट है।
1: जी
0: और दूसरी चीज, इंटरनेट पे जब आप जुड़ रहे हैं तो हमको ये जरूर याद रखना चाहिए कि अगर किसी भी तरीके का बुलिंग या किसी भी तरीके की परेशान करने से दिक्कत होती है तो हम भी किसी को परेशान ना करें।
1: जी मैम
0: हम जो है दूसरे व्यक्ति को भी थोड़ा मानवीयता से व्यवहार करें, दूसरे व्यक्ति को भी हम कुछ उल्टा सीधा ना लिखें और किसी भी तरीके से प्रोवोक भी ना करें कि वो उल्टा हमें फिर पलट करके पलटवार करें इंटरनेट पे। तो ये भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज ये कि अपनी कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, आपका ओटीपी, आपका फोन नंबर, आपका किसी भी तरीके की जो आपकी निजी जानकारियां हैं, वो आप किसी को भी देने से बचें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई जानकारी मान लीजिए आपने गलती से दे भी दी, या मान लीजिए किसी भी तरीके से आपको लगा कि कुछ गलत हो रहा है, तो उस समय पे चुप ना बैठें। किसी बड़े को जरूर आप कॉन्फिडेंस में लें, इस
1: जी
0: बात को बताएं और साझा करें कि जो है इस तरीके की कोई गड़बड़ी आपको महसूस हो रही है,
1: जी
0: क्योंकि वही आपको बचाव का रास्ता दिखाएगी, अन्यथा आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। तो
1: जी
0: ये चीजें मुझे लगता है हर पेरेंट को अपने बच्चों को बतानी चाहिए और एक खुला माहौल घर में देना चाहिए कि बच्चा बिना डरे माता पिता से इस तरीके की बातों को शेयर कर सके।
1: तो मतलब कि
0: जी
1: हमें कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या किसी ऐसे लिंक पर या किसी ऐसे दोस्त को अपनी जानकारी नहीं देनी चाहिए जो कि हमें नया नया दोस्त बना हो या कुछ भी। तो ऐसे में मैम
0: जी
1: हमारे पूरे समुदाय की या हमारे माता पिता की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, और ऐसे में रेडियो माध्यम क्या भूमिका निभा सकता है मैम?
0: देखिए, सबसे बड़ा जो माता पिता की भूमिका है वो ये है कि बच्चों को इस चीज से डराएं नहीं।
1: जी
0: और दूसरी चीज ये कि आपको ये नहीं बोलना है कि अब तुम्हें फोन ही नहीं मिलेगा, अब तुम्हें इंटरनेट यूज ही नहीं करना है। हम लोग का सबसे बड़ा पहला कदम क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि अब बंद कर दो सबको,
1: जी
0: बच्चे को
1: मैम
0: बिल्कुल इंटरनेट से अलग कर दो या ऐसा कर दो। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि हमको ये नहीं करना है कि बच्चे को बिल्कुल डरा करके हम इंटरनेट बंद कर दें या ऐसा कर दें। हमको रेस्ट्रिक्शन अलग चीज होती है और एक चीज होती है प्रिपरेशन।
1: जी
0: अगर आप बच्चे को प्रिपेयर करा सकते हैं तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है हर चीज के लिए।
1: जी जी
0: तो आपको जो है बच्चे को बिना डरे बात करने का माहौल आपको बनाना है।
1: जी
0: बच्चा अगर आपको बताता है कि कहीं कोई उसे बुलिंग कर रहा है, कोई उससे गलत बात कर रहा है, तो आप उसे उसकी बात पे भरोसा करें। जब आप उसकी बात पे भरोसा करेंगे तो बच्चा आके आपको बताएगा,
1: जी मैम
0: उसको जबरदस्ती डांटना नहीं है, उसके ऊपर कोई ये नहीं करना कि उसी पे आपने बोल दिया तुम्हारी वजह से ये हुआ होगा। इस तरीके की चीजें नहीं करनी है। और हम लोगों को अपनी भी चीजों पे थोड़ा सा बच्चों के सामने ध्यान रखना है कि अगर हम दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे इंटरनेट देख रहे हैं तो, और हम ये चाहते हैं कि बच्चा 1 घंटा देखे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन जो होता है घर में चीजों को लेकर के, माता पिता को थोड़ा उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ
1: जी
0: ऐसे समय बनाने चाहिए घर में कि जैसे खाना खाने के वक्त कोई भी फोन पर नहीं होगा। वो हर परिवार अपने तरीके अपना सकता है
1: जी
0: और
1: मैम
0: वो तरीके साथ मिलकर के बनने चाहिए। बच्चों को भी उसमें शामिल होना चाहिए कि सेफ इंटरनेट यूसेज के क्या तरीके एक परिवार डिसाइड करेगा, तो बच्चे माता पिता साथ मिलकर डिसाइड कर सकते हैं हो सकता है आप खाने के टेबल पर बोलें कि उस समय पे फोन हम नहीं लेंगे, हो सकता है कोई परिवार डिसाइड करे हम सोने के 2 घंटा पहले कोई भी फोन को हाथ में

0: लगाएगा। तो हर परिवार अपनी तरीके से ये कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आपस में बातचीत हो और बातचीत में एक दूसरे के प्रति कॉन्फिडेंस हो कि कभी भी किसी को भी अगर कोई परेशानी होती है इंटरनेट से, इंटरनेट के किसी यूजर से, तो वो आपस में घर में शेयरिंग होगी। तो इसी तरीके का माहौल अगर बनता है तो मुझे लगता है बच्चों के लिए भी एक सुरक्षित माहौल हम तैयार कर पाएंगे और हम डराएंगे नहीं बच्चों को इस माहौल से। जी
1: तो मैम, गांव और छोटे शहरों में जैसे कि ऑनलाइन सुरक्षा को लेके हम जागरूकता कैसे फैलाएं मैम?
0: देखिए, छोटे शहरों में अभी भी क्या है कि बहुत सारी जगह जहां हम लोग जाते हैं आज भी ऐसे हालात हैं कि बच्चों के पास फोन तक नहीं है, इंटरनेट नया नया किन्हीं किन्हीं जगह पे आ रहा है, या इतना ज्यादा गरीबी है कि बहुत कम जो है इस्तेमाल हो पाता है। लेकिन फिर भी जब मैं 14% पूरे देश में बता रही हूँ कि बच्चे इंटरनेट यूज करते हैं तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी संख्या है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि छोटे शहरों में क्या करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ये बताएं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो वार्निंग साइंस हो सकते हैं, रेड सिग्नल्स हो सकते हैं, वो हर एक को पता होने चाहिए। ठीक है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर किसी भी तरीके का कोई यूजर आपसे ये बात कह रहा है कि भाई ये बात किसी को मत बताना, ये अपने आप में एक रेड साइन है। अगर कोई आपसे आपकी निजी जानकारी पूछ रहा है, ये एक रेड साइन है। तो इस तरीके के रेड सिग्नल्स हर एक यूजर को पता होने चाहिए। आज भी बच्चे तो छोड़िए, बड़े भी बहुत सारे अननोन लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं, बहुत सारे इंटरनेट स्कैम्स के शिकार हो जाते हैं। तो ये जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, खुद पहले हमें वही टिंग टोंग थिंक टॉइस वाली जो रणनीति है, पहले हमें खुद पे अपनानी चाहिए। और जब हम वो बात करेंगे तो हमारे बच्चे भी देखेंगे, हमारे जो घर के और सदस्य हैं वो भी देखेंगे कि इससे क्या फायदा हो रहा है, ये क्यों हम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज है कि बच्चों को दो तीन चीजें जरूर बतानी है। एक तो ये कि कोई आपका कोई डेटा मांग रहा है, आप नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको जरा सा भी ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी तरीके की असुरक्षा महसूस हो रही है, तुरंत आप किसी बड़े को ये जानकारी साझा करेंगे, तुरंत आप किसी से बात करेंगे। और इस तरीके का माहौल आपको बनाना चाहिए कि देखो, तुम कुछ भी बताओगे तो हम आपको डांटेंगे नहीं, लेकिन किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप चुप ना रहें, मदद मांगें। मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है, समझदारी है। ये बात हमें बच्चों तक पहुंचानी है कि मदद मांगोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, समझदारी है। ये एक बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको बच्चों को जरूर बतानी चाहिए।
1: साथियों, बातें तो बहुत हो गई, सवाल जवाब बहुत हो गए, और हम चाहेंगे हम आपको ये गीत सुनाएं और मिलेंगे एक छोटे अंतराल के बाद। आप कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4 के साथ। और

0: श्रोताओं, हम लौट आए एक छोटे से अंतराल के बाद और आपको ये गीत कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। और आज के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। और हमारे साथ मौजूद हैं जया सिंह जी, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैम, ऐसे में तो मैम गलती तो बड़े भी करते हैं, तो आपने या आपकी टीम ने सिर्फ बच्चों को टारगेट किया है, खास तौर पर महिला या लड़कियां?
1: ऐसा नहीं है, बच्चे हैं वो बच्चों के साथ काम करता है, तो हम ये जानते हैं कि बच्चे बड़े भी गलती करते हैं, बच्चे भी गलती करते हैं, लेकिन बच्चों के थ्रू हम पूरे समाज को टारगेट कर रहे हैं। जब हम बच्चे की बात कर रहे हैं तो माँ बाप को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, हम सिर्फ बच्चे से बात करके तो इस पूरे माहौल को तैयार ही नहीं कर सकते। जब तक माता पिता इसमें शामिल नहीं होंगे पूरी तरीके से तो ये तैयारी अधूरी है। माता पिता को ही मेन रोल लेना है, बच्चों को समझाना है, जो आपके हेल्पलाइन नंबर्स है ये सारा कुछ माता पिता बच्चों हर एक को पता होना चाहिए। कई बार माता पिता अगर किसी तरीके की मुश्किल में फंस जाते हैं, घर में शेयर हो रहा है, कई बार

0: नंबर्स याद होते हैं, बच्चों को याद होता है कि हाँ ठीक है कौन से वेबसाइट पे आप कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि जो ये इंटरनेट के स्कैम से ये किसी कोई भी इनसे घबरा जाता है, लोग अभी भी इन स्कैम से लेकर के डरे हुए हैं। तो डर में क्या होता है, आप सही कदम नहीं उठाते हो। तो इसलिए घर के हर व्यक्ति को ये जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊंगी 1930 राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन है, हर एक को ये नंबर याद होना चाहिए 1930, मैं रिपीट करूंगी। उसके अलावा cybercrime.gov.in, ये एक राष्ट्रीय साइबर अपराध की जो है ये रिपोर्टिंग पोर्टल है, जिसपे कोई भी अपना अगर कोई भी दिक्कत होती है या किसी तरीके की कोई ठगी हुई है, कुछ हुआ है, तो आप इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं, cybercrime.gov.in। तो ये दोनों चीजें तो है, बड़े बच्चे सभी को ये पता होनी चाहिए। उसके अलावा हम सब जानते हैं 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन है, उसका नंबर हर बच्चे को पता होना चाहिए। आज की डेट में 112 जो है वो इमरजेंसी हेल्पलाइन है, जिसमें तुरंत आपको किसी भी तरीके की आपातकालीन सहायता चाहिए तो तुरंत आपको जो है मदद मिलती है। तो ये तीन हेल्पलाइंस और ये आपका जो है cybercrime.gov.in, ये सारी चीजें हर व्यक्ति के दिमाग में बिल्कुल टिंग टोंग की तरह क्लियर होना चाहिए कि जैसे ही टिंग टोंग हुआ आपको याद आ गया 1930। तो ये टिंग टोंग थिंक ट्वाइस कैंपेन इसको भी बोलती है कि ये सारे नंबर्स और ये सब कुछ आप एकदम अपने पास, एकदम अपने दिमाग में तैयार रखें। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है बच्चे बड़े सबके लिए हैं।
1: जी, तो क्या हम ऐसे में मान सकते हैं कि शुरुआत में बच्चे को सावधान करना है, आगे इस कार्यक्रम में और भी लोग जुड़ेंगे क्या?
0: इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग पहले से जुड़े हुए हैं, हम लोग हर तरीके के स्टेक होल्डर्स के साथ इस कार्यक्रम को लेकर के जा रहे हैं। हम लोग जहाँ गाँव में बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, वहीं हम पंचायतों के साथ भी बात कर रहे हैं, हम टीचर्स के साथ भी बात कर रहे हैं जो बच्चों के साथ जुड़ के काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम सिर्फ बच्चों पे फोकस्ड है, ये कार्यक्रम बच्चों के लिए खास तौर पे है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्थिति में होते हैं। अगर बच्चों को अगर बड़े सपोर्ट नहीं करते, तो अगर कहीं एक बार बच्चे के साथ बुलिंग होती है या कहीं एक बार बच्चे को कोई थ्रेटन करना शुरू करता है, तो वो बच्चे को बहुत ज्यादा गंभीरता से असर कर सकता है अगर बड़े उसमें टाइमली इन्वॉल्व नहीं होते। कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये भी बताऊंगी कि जो है हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, सेमी प्राइवेट स्कूल्स के साथ भी इस इनिशिएटिव को लेके जा रहे हैं, और हम लोग सभी से कह रहे हैं कि इस कैंपेन से जुड़िए। दिल्ली एनसीआर में इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए प्राय वॉलंटियर बनके कोई भी हमारे साथ जुड़ सकता है। तो मैं इस रेडियो प्रोग्राम के जरिए ये भी लोगों को कहना चाहूंगी कि अगर कोई वॉलंटियरिंग करना चाहता हो इस कैंपेन की अवेयरनेस जनरेशन के लिए, इस कैंपेन को आगे ले जाने के लिए, तो सभी के लिए ये कैंपेन ओपन है, आप प्लीज संपर्क करें, आए, मदद करें, ये हमारे बच्चों बड़ों सभी के लिए ये कैंपेन है।
1: जी जी, तो साथियों अभी हम सुन रहे थे रेडियो बुंदेलखंड 90.4 के साथ जुड़ी हुई थी प्रोग्राम हेड के तौर पे जया सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा कैसे करें, उनमें माता पिता और पूरी समुदाय की क्या भूमिका हो सकती थी। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए, बच्चों को अच्छी जानकारी देने के लिए, माता पिता को जानकारी देने के लिए कि हम कैसे सुरक्षित कदम उठा सकें। तो दोस्तों अगली बार जब आपके मोबाइल पर कोई अनजान मैसेज, लिंक या रिक्वेस्ट आए तो तुरंत क्लिक मत कीजिए, एक पल रुकिए, थिंक ट्वाइस कीजिए और फिर सही फैसला लीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सावधानी आपको एक बड़ी परेशानी से बचा सकती है। याद रखिए टिंग टोंग थिंक ट्वाइस। मैं हूं आरजे हर्ष और आप सुन रहे हैं रेडियो बुंदेलखंड 90.4। जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास के बच्चों को भी ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में जरूर समझाइए। फिर मिलेंगे एक नई बात और एक नई जागरूकता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मैम, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू बुलाने के लिए आपको, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम। साथियों अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम नन्हे दिलों की और ये कार्यक्रम का समय हो चला है यहीं पर खत्म, और हम चाहते हैं आपसे अलविदा, लेकिन जाते जाते हम आपको सुनाना चाहते हैं ये प्यारा सा गीत जो कि गाया है काशीराम अहिरवार।

आज की हमारी इस खास बातचीत का मकसद सिर्फ लाड़पुरा की कहानी सुनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि एक गांव अपनी पुरानी विरासत को बचाते हुए आधुनिक समय के साथ कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे पर्यटन स्थानीय लोगों के लिए अवसर बन सकता है, कैसे हमारी बुंदेली संस्कृति आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सकती है और कैसे विकास के साथ गांव की असली पहचान भी सुरक्षित रह सकती है। राम राम, मैं हूं हर्ष और आप जुड़े हुए आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन से। साथियों, मैं आपके सामने आज एक ऐसी बात रखना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं। कभी कभी इतिहास सिर्फ किलों और महलों की दीवारों में नहीं मिलता, वो मिट्टी के आंगन में मिलता है, खेतों की पगडंडियों में मिलता है और उन बुजुर्गों की बातों में मिलता है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने गांव को बदलते देखा। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो बुंदेलखंड 90.4 और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे हर्ष। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बुंदेलखंड के एक ऐसे गांव की ओर जो अपनी सादगी, संस्कृति, परंपराओं और ग्रामीण जीवन के कारण आज पर्यटन के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बना चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाड़पुरा खास की, जो ओरछा से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गांव पहाड़ियों, हरियाली, खेतों और ग्रामीण जीवन से भरा हुआ है। लेकिन सवाल ये है जिस गांव को आज लोग पर्यटन और अपनी संस्कृति के लिए जान रहे हैं, वो गांव पहले कैसा हुआ करता था? चलिए इसी सवाल का जवाब तलाशते हैं, गांव के कुछ लोगों से बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं इस गीत को। श्रोताओं, कहीं जाइएगा नहीं, हम आगे भी बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे। जुड़े रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4 के साथ।

0: साथियों हम वापस आ चुके हैं आज के खास कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत में, और चलते हैं गांव की तरफ, मिलते हैं कुछ किसान भाइयों से, कुछ युवा साथियों से, जो हमें इस गांव का इतिहास, इस गांव की संस्कृति बताएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक भाई। भैया आपका नाम क्या है?
1: जी मेरा नाम दिनेश सिंह कुशवाहा है।
0: जी साथियों हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिनेश कुशवाहा जी। तो हमारा आपसे प्रश्न ये है कि आपने अपने बचपन में लाड़पुरा को कैसा देखा था और उस समय गांव की जिंदगी कैसी हुआ करती थी?
1: अगर हम अपने बचपन

0: की बात करें आज से 25-30 साल पहले की, तो उस समय ना तो गांव में कोई भी सड़क थी, ना ही कोई रास्ते थे, ना ही कोई अस्पताल थी, यानी जो जीवन था वो पूरा अस्त व्यस्त था। क्योंकि पूरे गांव में जो अपने मकान थे, कोई खपरेल था, कोई बिल्कुल कच्चा मिट्टी का हुई बना हुआ है, और कहीं पर जगह जगह हमको ये लकड़ी और पत्तों की, जो हमारे यहाँ जंगल है पास में, तो जंगल के में जो सागौन है, सागौन के पत्तों से झोपड़ी बनाते थे
1: जी।
0: तो आज से 25-30 साल पहले की स्थिति ये थी हमारे गांव की
1: जी।
0: और आज की जैसे अगर वर्तमान की स्थिति करें बात करें तो मध्य प्रदेश टॉप है पर्यटन विलेज के दौरान
1: जी, जी, जी।
0: तो ये समय के हिसाब से बहुत कुछ बदलाव देखे हैं और बहुत कुछ महसूस भी किए हैं
1: जी।
0: अगर हम बात करें अपने यहाँ की जो सरपंची की बात करें
1: जी।
0: तो सबसे पहले 2001 या 2 में शायद मेरे हिसाब से पहली बार सरपंची आई थी
1: जी।
0: हमारे गांव में चुनाव शुरुआत हुए थे सरपंची के
1: जी।
0: फिर इसके बाद में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता रहा। कोई सरपंच आया तो उसने किसी ने थोड़ा पत्थर डलवा दिए रास्ते में, पहले क्या कि जगह जगह पानी भरा रहता था, बरसात के समय में कीचड़ था, पानी की भी समस्या रहती थी, ओनली जो कुएं थे तो वहीं से पानी की सुविधा थी, कहीं हैंडपंप नहीं थे। फिर समय के हिसाब से बदलाव होता गया, अपने पानी की सुविधा हुई, हैंडपंप भी लगाए गए, और कहीं कुछ सरपंच आए जो अपने, तो उन्होंने रोड पे पत्थर डलवा दिए। फिर इसके बाद बात करेंगे हम करीब अपनी 12-13 की, सन 2012-13 की, जब हमारे गाँव का जब एकदम से बदलाव हुआ है, तो ये जो हमारा गाँव पर्यटन में घोषित हुआ है, पर्यटन विलेज में
1: जी।
0: और वो भी मध्य प्रदेश टॉप में, क्योंकि जो यहाँ का रहन सहन था तो वो अभी भी पुराने रीति रिवाज, जो पुरानी अपनी संस्कृति है, तो संस्कृति से जुड़ा हुआ है।
1: तो जैसा कि आपने बताया, तो उस समय लोगों का रहन सहन, खान पियन, खेती बाड़ी और रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती थी, और आज उसमें क्या बदलाव आपको देखने को मिला है?
0: अगर जैसे उस समय की अगर हम बात करेंगे, पुराने समय की, तो उस समय जो हम अगर खान पान की बात करें, जैसे आज हम क्या कह रहे हैं, गेहूं का आटा
1: जी।
0: उसी से रोटी बना रहे, तो उस समय गोदे और फेकार होते थे, ये जो अपना आज के समय को मोटा अनाज बोलते हैं। तो आज के समय में अगर हम बोल लेंगे कोदे फेकार के अगर नाम बोल लिया, तो हमारे बहुत से साथियों को नाम भी नहीं जानते होंगे, जो नई पीढ़ी है तो वो नाम भी नहीं जानती कि कोदे होता क्या है, फेकार होता क्या है, ये चीजें होती कैसी थी, कहीं देखा भी नहीं है किसी ने, जो देखने की बात है जब नाम नहीं सुना तो देखा भी। तो अपना कोदे फेकार, अपना जो जवा बोलते हैं, जौ, बाजरा और जुड़ई, मक्का, इन चीजों की रोटी खाते थे। और जो अपनी गेहूं की अगर बात करें, तो गेहूं जब कभी का कोई त्योहार पड़ा तो उस समय गेहूं की रोटी बनती थी। तो पहले खान पान में ये था कि गेहूं उतना ज्यादा पैदा भी नहीं होता था, सबसे ज्यादा फसलें यही चीज की पैदा होती थी।
1: तो आपके हिसाब से गांव में अभी तक सबसे बड़ा बदलाव कब आया, जब बाहरी लोग यहाँ लाड़पुरा को जानने लगे, यहाँ आने लगे तब?
0: नहीं, उसके पहले विकास तो हो गया था, अपने रोड और सड़कें भी काफी हद तक सही हो गई। और जो हमारा बदलाव हुआ, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा बदलाव हुआ क्यों है, क्योंकि इसका अगर हम मेन रीजन लेके जाएंगे, तो जो हमारा गांव है, तो गांव के एक साइड पहाड़ पर है
1: जी।
0: एक साइड तालाब है, और गांव के दो तरफ से नदी जा रही है
1: जी।
0: और जिस तरफ नदी है उस तरफ हमारा जंगल भी है।
1: बिल्कुल।
0: तो यानी जो हमारा गांव है, जो गांव का वातावरण था पुराने समय से, तो वो चारों तरफ से एक प्राकृतिक वातावरण है, कि एक साइड आपको सभी चीजें एक ही जगह देखने को मिलेंगी, वो भी प्राकृतिक रूप में। जो भी तालाब है तो हमारा आज के समय का नहीं है, वो बहुत पुराने समय का है, कि जो हमारे बाप दादा थे उनके पहले का समय का तालाब है
1: जी।
0: तो जैसे हम उसका इतिहास भी नहीं बता सकते, कि कोई भी नहीं बताया वो कब का है, किसने बनवाया, कैसे बनवाया। तो एक प्राकृतिक रूप से तालाब भी है, काफी बड़ा तालाब है, अपना एक तरफ पहाड़ भी हो गया है देखने के लिए, जो पर्यटन आ रहा है, सैलानी आ रहे, गाँव की जिंदगी देखना है। तो यानी जो सारी चीजें हैं, अगर हम जंगल की बात करेंगे तो जंगल भी हमारा यहाँ देखने को मिलेगा, जंगली जानवर भी देखने को मिलेंगे, नदी को हमको आना चाहिए, नदी देखना है कि नदी का वो अनुभव चाहिए, तो वो भी चीज यहाँ पे है। अगर गांव के यानी है 500 मीटर के, कोई चीज है गांव से 200 मीटर के दूरी के दायरे में है, कोई अपने 500 मीटर के दायरे में, कोई 400 मीटर, यानी 300-400-500 मीटर के दायरे में ही ये सारी चीजें हैं। तो यानी एक तरफ सारी चीजें उपलब्ध हैं जो प्राकृतिक वातावरण में है, और इसके साथ में अगर मैन बात करें, तो हम इसके साथ में कभी छेड़छाड़ नहीं हुई हमारी गांव की ओर से, तो ये सारी चीजें सुरक्षित रहीं। तो 2018-19 में एक हरितका हैश कोई संस्था हरितका वाले आए, उन्होंने देखा, तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए गांव वालों को कि आप यहां पर होम स्टे बनवाइए, यहां पे जो आपकी लोकेशन है, जो गांव है यहाँ पे, आपके जो विदेशी सैलानी आ रहे हैं, हमारे नजदीक ओरछा लगा हुआ है 8 किलोमीटर दूर,
1: जी
0: तो ओरछा जैसे विदेशी सैलानी आ रहे हैं, उनको गांव का एक अनुभव चाहिए,
1: जी
0: गांव का रहन सहन, गांव का खान पान, क्योंकि गांव का जो खान पान है वो आज भी बदलाव नहीं है। हाँ, बदलाव इतना आया है कि पुराने समय में वो जो जुड़ाई, मक्का, बाजरा, कोदे, फकार, जो अपने कुछ मोटे अनाज थे उनकी रोटी खाते थे, आज गेहूं की खा रहे। बस बदलाव वही है कि जो मोटे अनाज की जगह गेहूं आ
1: गेहूं आ
0: गया,
1: गया।
0: और बकाया कोई बदलाव नहीं है कि अब यहाँ पे आपको पिज्जा नहीं मिलेगा, बर्गर नहीं मिलेगा, चाउमीन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा शुद्ध मिलेगा,
1: गांव
0: जो
1: का
0: गांव का देसी भोजन
1: जी
0: है
1: जी बिल्कुल।
0: वही मिलेगा। तो ये सारी चीजें रही।
1: और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी गांव की ऐसी कौन सी कहानी, ऐसी कौन सी परंपरा है जो आप चाहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी भी उसको याद रखे और उनके आगे आने वाली पीढ़ी भी उसको जाने पहचाने और आगे उसको कायम रखे।
0: हमारे गांव में एक बोलते बछड़े उफाग,
1: जी
0: वो शायद है मेरे हिसाब से भी मथुरा वृंदावन में भी चलती है,
1: जी
0: कि आसपास की कहीं क्षेत्र में मैंने नहीं देखी फिलहाल। वो अपनी जो चैत्र माह आता है, चैत्र माह में जो नवरात्रि होती है, चैत्र
1: जी
0: माह माह की नवरात्रि का जो दशहरा है,
1: जी
0: उस दिन बछड़े उफाग बोलते।
1: बिल्कुल
0: यहाँ पे एक हरदोल बाबा का मंदिर है हमारे
1: जी जी
0: गाँव में,
1: हाँ
0: वहाँ पे करीब वही 40 फट के आसपास सागौन की बल्ली गड़ी हुई,
1: जी
0: उस पे कुछ गुड़ पपड़िया बांधेंगे ऊपर।
1: बिल्कुल
0: तो जो सारी गांव की औरतें हैं वो कम से कम 15-15 फुट लंबी लाठी लेकर उसकी रखवाली करेंगी,
1: जी
0: और गांव का इंसान हो या अनगांव का, दूसरे गांव से भी आए, कहीं से भी आए, कोई देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, चारों तरफ के पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं उस दिन वो प्रोग्राम देखने के लिए।
1: जी जी
0: तो उसमें सबसे पहले मौका तो दिया जाता है बाहर वाले को चढ़ने के लिए, गांव की जो औरतें हैं तो उसको वो रोकेंगी कि
1: जी
0: कोई चढ़ ना पाए
1: चढ़ ना
0: लट
1: पाए
0: से, और वो सारी औरतें जो उसके नजदीक जाएगा वो पूरी ताकत से उस पर लाठी
1: लाठी
0: चलाएंगे।
1: चलाएं।
0: लाठी यहाँ पे वो पुरानी परंपरा चल रही है कि गांव के कुछ एक दो समाज जो हैं जो लाठी काटते थे पुराने समय से, वो यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो
1: जी
0: पहले
1: जी
0: उनके बाप दादा काट के लाते थे, वो उनके लड़के ले आए, वो उनके
1: अब आगे की पीढ़ी
0: नाते हो गए यानी पोते हो गए, वो लेकर आ रहे, तो ये चीज वो चल रही तो वो लेके आएंगे। तो वो यानी लाठी कोई सूखी नहीं रहेगी, यानी वैसी मजबूत रहेगी कि आपकी हड्डी टूट जाए या कोई वैसी चोट लगे कि आपकी जो त्वचा है, खाल है, उसमें ही चोट लगेगी, क्योंकि जामुन की तो पतली लंबी लाठी लेकर आएंगे,
1: जी
0: गीली रहेगी तो आपका जो शरीर है वो फूलेगा लेकिन चोट नहीं लगेगी।
1: जी
0: तो उसकी वो रखवाली करेंगे, उस पे चढ़ना है बल्ली को, जो बल्ली के ऊपर जो वो गुड़ पापड़
1: पापड़
0: बांधते
1: बना
0: हैं
1: है
0: वो तोड़ देंगे। इसके बाद में जो अपना ये फंक्शन प्रोग्राम रहता है ये खत्म हो जाएगा।
1: जी
0: तो इस चीज की हमारे प्रयास भी है, गांव का भी प्रयास है कि जो ये परंपरा चली आ रही है, पुरखों से चली आ रही है,
1: आगे भी कायम
0: और
1: रहे।
0: आगे भी कायम रहे, क्योंकि
1: जी
0: ये सबसे अनोखी परंपरा है और देखने लायक है, और देखते भी लोग हैं बहुत दूर से।
1: जी तो आज जब पर्यटक यहाँ आते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इससे गांव के लोगों की जिंदगी या रोजगार में कोई बदलाव वगैरह आया है?
0: उसमें काफी हद तक भी बदलाव है, जैसे बात करें हम ई रिक्शा की, तो कुछ महिलाएं भी ई रिक्शा चला रही हैं, कुछ पुरुष भी चला रहे हैं। तो जो पर्यटक आते हैं तो वो तो पैसे वाले हैं, घूमने के लिए आए, तो वो तो एक लग्जरी लाइफ पहले से ही जी
1: जी
0: रहे हैं,
1: रहे
0: तो उनको 4-व्हीलर नहीं चाहिए, एसी गाड़ी नहीं चाहिए, उनको खुला माहौल चाहिए।
1: जी
0: तो अगर उनको जैसे आसपास हमारे ओरछा घूमने के लिए जाना है, जंगल घूमने के लिए जाना है, तो वो अपना 4-व्हीलर से नहीं जाएंगे,
1: ई
0: वो
1: रिक्शा
0: गाड़ी
1: करेंगे।
0: अपना जो होम स्टे बने हुए वहां पे खड़े हुए ई रिक्शा करके
1: जी
0: जाएंगे।
1: जी जी
0: तो एक ये ई रिक्शा का एक रोजगार ही मिल गया काफी
1: जी
0: लोगों को, और जो होम स्टे संचालक हैं जिन्होंने बनाए हैं उन वहाँ पे वो 2-4 लोगों को रखे हुए भी हैं कि
1: जी
0: गेस्टों की देखभाल देखरेख के
1: देखभाल के
0: लिए,
1: लिए
0: और इसके अलावा गेस्टों को जंगल घूमने के लिए जा रहा है, पहाड़ पे जा रहा है, गाइड की भी तो पड़ रही, तो कुछ लोग उनके साथ भी जा रहे हैं।
1: जी
0: तो यानी अगर बात करें तो 200-250 लोगों का रोजगार यानी मिला है और बड़ा है।
1: तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे दिनेश सिंह कुशवाहा जी से, जिन्होंने हमें बताया लाड़पुरा गांव के इतिहास के बारे में। और उम्मीद है साथियों, आप सभी को दिनेश जी की बात समझ आई होगी कि हमें संस्कृति, अपनी विरासत को समय के साथ कैसे बचाना चाहिए। साथियों, कार्यक्रम में बातचीत ज्यादा हो गई है तो इधर थोड़ा सा मनोरंजन डाल देते हैं, जिससे हमारे श्रोताओं को अच्छा और अच्छा लगे। एक जिंगल हो जाए और ब्रेक के बाद फिर इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, कहीं जाइएगा मत। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो, अपनी बातें।
2: मेरा गांव

0: से।
1: आज ही मिलें अपनी पंचायत से और जुड़े इस अभियान से।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
3: तो साथियों, आज के कार्यक्रम का सारांश ये है कि बुंदेलखंड के ओरछा के पास स्थित गांव लाड़पुरा खास की कहानी पर आधारित। इससे गांव में पुरानी जीवन शैली, खेती, परंपराओं और संस्कृति की तुलना आज के ग्रामीण पर्यटन से की गई है। स्थानीय लोगों से गांव के बदलाव, रोजगार, युवाओं की भागीदारी और विरासत को बचाने से जुड़ा सवाल पूछे गए हैं। आज के कार्यक्रम का मुख्य संदेश है कि विकास और पर्यटन के साथ गांव अपनी जड़ों, बुंदेली संस्कृति और पहचान को भी सुरक्षित रख सकता है। तो श्रोताओं, लाड़पुरा की कहानी हमें एक खूबसूरत बात सिखाती है। विरासत वो नहीं जिसे सिर्फ संभाल कर रखा जाए, विरासत वो है जिसे अगली पीढ़ी तक जिंदा पहुंचाया जाए। आज गांव में आने वाले पर्यटक सिर्फ पहाड़, खेत या मिट्टी के घर नहीं देखते, वो यहाँ के लोगों की जिंदगी देखते हैं, उनकी संस्कृति महसूस करते हैं और उनकी मिट्टी से जुड़ी कहानी अपने साथ लेकर जाते हैं। इसी खूबसूरत कहानी के साथ आज के लिए मैं आरजे हर्ष आपसे लेता हूं इजाजत। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, जहां आवाज सिर्फ रेडियो से नहीं आती, आवाज आती है हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति से और हमारे बुंदेलखंड से। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आओ दोस्तों सुनते हैं कहानी, खो लेते हैं कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कोते राजन के कुमार
2: आओ
1: और एक हती बानिया के लड़का।
2: अच्छा मतलब एक हती राजा के कुंवर,
1: एक हती बानिया के।
2: आज दो जने हो गए,
1: दो जने हो गए।
2: हाँ
1: अच्छी तरह से गए उनकी दोस्ती।
2: हाँ
1: उनकी दोस्ती रहे सो अपने काम काज तो के पढ़ लिख के जो भी आ गए सो बन खून चले जा गए।
2: दो ही के दो
1: शिकार भी अपनो घोरो मस्के भी अपनो घोरो मस्के।
2: हाँ
1: अब जब वन में पहुँच गए
2: हाँ
1: तो जा शिकार खेली बा शिकार खेली खेल खाल के अपने घर पहुँच गए। अब कल को दिन बर्ती तुमने फिर कर गया।
2: अच्छा
1: कल के दिन में भी बोले कल ले बीरन बोले अब बीरन ने कही कि हम तो भाई ससुराल जा रहे।
2: अच्छा
1: अब राजन को नहीं है तो पतो के हमारे ससुराल थे। अब राजन को तो बस बीरन थे अपने बानिया कितना शिकत बीरन।
2: अच्छा
1: हो भी है बादशाह बीजन और बादशाह दोनों जने रहो कह के राजा हो बादशाह। तो बस बीजन ने जिसे बार मार बनवाए दाढ़ी फाड़ी बनवाई बार छटवाए कले कवैया कहाँ के जाने छटे कले ससुराल हो जा रहे।
2: अच्छा
1: अब जब नाव घेगो से नाव को रख तो गांव भर को

0: फलाने के ब्याह है, फलाने के लगन है, फलाने के सुतकरा है, फलाने के पक्या थे
1: जा सही के
0: नाव को सब पतो है।
1: हाँ।
0: तो नाव को तो राजन की कुमार की ससुराल को पतो
1: ऐसा।
0: सो बस अब बीरन के बार बन गए।
1: हाँ।
0: अब राजन के बादशाह के बनने।
1: हाँ।
0: तो बादशाह के बार बने।
1: हाँ।
0: तो बादशाह बोले, बोले कर ले

0: नाव होगा
1: हाँ,
0: बादशाह होगा विजन हो गए और तीन जने की दोस्ती हो गई। चलिए ससुराल के जाने तो उनके राजन के कुंवर के पिताजी ने एक गेहूं ने कुज्जा खुदवाई थी, सुबह में बीजक लगवाओ तो कि जब बीजन की ससुराल को गल गई वो जब बादशाह की ससुराल को गल गई।
1: अच्छा
0: गली में से बटी उन्हें लगी प्यास तो राजन ने हुक्म दिलो चलो बीजन पिया पानी, बीजन का पानी पीवे के लाने सुबह ने बीजक बाँचो।
1: अच्छा
0: बीजक बाँचो वामे सुबह में गली अलग अलग बीजन हो बदमाश बीजन बदमाश हो।
1: अच्छा
0: तो बीजन ने कहा करो किस्ता के पानी पी के बावरी में वो बीजक को भरा दो
1: ले उस तो
0: अगर हमारे अगर जब बीजक को जो राजा पानी पीवे आ रहा तो जब बाँचे ले तो संग छूट गो इसे के हमारे ससुराल चलेंगे
1: चलेंगे
0: तीनों जने
1: जाकर
0: बीजन बदमाशी के रहवा सुबह सब राजा पानी पीवे गए तो राजा ने पानी पियो जो तमाम बावरी में है सुबह में बीजक में गिराव लगो रहा तो राजा ने अपने खोबन की उली चुली के भाई
1: धुदाओ
0: धुदाओ और फिर उगे बाँचो बाँचो भाई सुबह ने उन्हें प्रधान पूरो लिखो कि जा राजन के कुमार को रास्ता गई और जब बीजन के कुमार को रास्ता गई दोनों जने तो बोले कहे बीजन बोले कहिए राजन के राजा बोले तू बहुत बदमाश है बोले कल पुरखन को बीजक ने बता दिया है हट कर ले कि हम अपनी ससुराल जाते अपनी ससुराल तो बोले कल उनकी शर्तें लग गई।
1: अच्छा
0: बोले कल जो पहले आज विदा करा के वो जिस बाउरी पर ठहरे क्या जन किसी को बीत
1: जाए
0: अपनी ससुराल चले गए और भी अपनी ससुराल कर ले वो जी ससुराल आपका नाव बोले कल जी राजन के संगे चले
1: सही है।
0: अरे हमारे वर के संगे का चले हम सेठ आदमी और राजन के संगे जी वो हेल्पर चलते हैं कल तो राजन की कुमार और सताई का दो जन है जा रहे बीजन अपनी ससुराल चले रहे। अब सब राजन के कुमार जा रहे से बन कजली में पहुंचे तो अब राजन की कुमार को लगी प्यास।
1: अच्छा
0: बोले कल सुधाई का बोले कल ये राजन के राजा कल हमें प्यास बहुत जोर से लग रही और हमारे सागर सही से प्राण निकल जा रहा है इसे पानी को देखो। बोले कल राजन के राजा बारह कोस में ना है पानी ना माए पानी अपन वन में हेंगे। बोले कल अरे क्या क्या बोल रहा है ना गाते बोले कल हो महाराज सुबह एक का खैबर पे चढ़ी ऊपर देख के भी लंबे जिस ऊंची जांगा हो सब देखा ऊंची जांगा हो गई चढ़ी तो ये कुत्ता दिशा में बगली मर रहा है। तो नाव ने सोची कि बिन पानी की बगली रहती नहीं है पानी इधर होगा
1: बिल्कुल
0: तो बोले कल राजन के राजा पानी तो हमें कहीं दिखाना नहीं है उत्तर दिशा में बगली मर रहा रही और बिन पानी की बगली नहीं देती है पानी जमी हो गई उठे। बोली कहने चल तो ले जा सुबह लोटा घड़ी ले अपनी अरे खुली जाए सुबह जन में दे पाई खुली से जीत गए की आना फिर बाहर आराम से मिले आराम से बिन नगर चली गए। तो उत्तर काकिस्ता हाथों के जोनवर लड़की राजा ने खून बियाई थी वो नदिया में स्नान कर रही थी।
1: अच्छा
0: नदिया में स्नान कर रहे तो सुताई अक्का ने कहा करो कि झटपट पानी पी के और मचो सचो भर के और पहुंच गए। बोले कहने सुताई अक्का बोले कहने के ये राजन के राजा बोले कहने उस तालाब में पानी ये सो ठीक है तुम ले आए बोले कहने महाराज जाकी ना पूछो पानी पी लो तुम तो बोले आप तो पानी जब पिए जब जब बात पूछ ले बात है क्या क्यों पानी जो मचो लिया ऐसा जल्दी होते कौन के मचो सचो भर के आ गया। बोले कल महाराज कल ऊ तालाब है वो बड़ी अजीब का लड़की सफर रही एक तो उसके साथ हमारा मूर्छा छा के गिर पड़ी तो हम तो सब मचो सचो भर लिया वो हम खुद भी आसन मर जा रहे अरे बोले कल बगरा गए तो वो पानी बगरा के दो जने तालाब पे पहुंच गए। तालाब पे पहुंच गए तो तालाब पे पहुंच के बाने और कल

0: दयक्का वो निकल ले, ये राजन के राजा वो निकल ले इसको। लड़की को पूछने तो जरूरी है, जब मुंह बोले कैसे,
1: सही है,
0: जब पीछो करें अपन ताए को और मुंह करें ताला ताए को, वो निकल ले। कहो उन्हें कही

0: नवकक्का ने कही के
1: नहीं, राजन ने कही जाओ,
2: राजन ने कही जाओ,
1: राजन ने कही जाओ।
0: हाँ
1: फिर कही उनने, अब्बा बोले जल में ढाड़ी जो।
0: अच्छा
1: अब्बा बोले
0: लड़की जो नहा रही,
1: जो नहा रही बा बोल रही है।

0: काया का बोले कल राजन के राजा, सुनो हमारी बात, अभी से बोल दो ना।
1: सही है,
0: अभी से बोल दो ना, बोलो कब का बना दे वाला
1: बताओ।
0: हैं सही कही, बोले कल नहीं, अबे तो हम इससे और बोलेंगे।
1: हाँ,
0: अब राजा बोल रहे हो।
1: हाँ,
0: भूले मोसा।

0: अपने गली में बता दो सब काउ के द्वारे में
1: अब पहुँच जाए।
0: अब कहिए हाथ उठाते अगर बता दीजिए, अब वह जल के भीतर हुई। अब इनको समझ में नहीं आ रही जल के जाए, इनको बदन शरीर है कैसे, मुंह करे मायक हो और पीठ करे इंतायक हो। कही के अब जाइए से बताया, सुनने के बाद माँ से बोली।

0: क्या बात भाई साहब।
1: अच्छा
0: बाने बली ना बताई न बाने बदन काड़ो जल नीर में रहेगा।
1: अच्छा
0: अपने पर्दा भीतर रही बस साहब उनने किसी गली तो पूछ ही ली थी। गली पूछ के उनने घूरो बढ़ा गाँव के लाने तैयार। अब बाने सोची कि ये मुसाफर अगर पहुंचे जा तो गड़बड़ हो जाए बाने जल्दी पल्दी सफरो और सफर खूर के और बाप ने जेल चली जो ये हती से जाते भवन द्वारे छोटे अक्का को देखो तो ससरा सुबने द्वारे उनने अब पहुंची घरे पहुंची घरे सुख गई घरवाओ को बंदो। अब भाभी से बोली भी

0: और तुम्हारी आ गए चाला।
1: अब लुबग्गू आ गए तुम
0: लुबग्गू। तो उनने फिर भाभी से कही, अरे भाभी आज नाश्ता तुम न बनाओ, आज हम बनाए।
1: ऐसा
0: भाभी से कही। सुबह सुनने घरेला उतार के अपने नाश्ता बना भी के लाने तैयारी की। तैयारी करी अब इन दोनों ने कही चला।
1: अच्छा
0: बोले कर लगी हो अपन को कौवा गेल कुमार बना दी।
1: हाँ बिल्कुल।
0: अब भोजन नहीं करने।
1: हाँ
0: भोजन नहीं करने इसकी।
1: हाँ
0: वो वाला थे जी।
1: सही कह रहे।
0: अब खुला खुला थे अभी खुलो।
1: हाँ
0: मैं तो सलाह हो रही। दो जन की सलाह हो रही, नाव की और राजन की। सुबह सवती से उनने व्यंजन की भोजन बनाए। भोजन बना के और आज्ञा दे दी भोजन की लाना। तो दोनों जने भोजन को गए। भोजन को गए साफ सूर ने चाहे एक ने चाहे खाई हुई चाहे दो खाई हुई। और वहां से बना ठना ना जवाब ठोको।
1: अच्छा
0: ठोकनी ठोकने ना तो भेद कैसे खोलेगा।
1: हाँ, सही है।

0: मिलता थी सरकार के माए कच्ची अब अभी खुल गो के जई है जा
1: सही कह
0: रहे जब बात
1: दही के होते
0: जई है जब बाबा ने बात खोली सो बोल समझ गए सो उनने माता थी माटी सरकार के ओ बस सुता जा कान पे झटपट जो कछु राजन चली तो बाबा दी ओ बाप नी बांधी ओ बस चाची माटी जो कर मैं लगता के कर लगा है कह रहा जा बोले कल अभी तक क्यों आया बोले कल महाराज मैंने अपनी टाटी धोई वो आपकी धोई तो फिर मैं
1: आऊं टाइम लगता
0: है बोले कल सुन ले कल सिपता ना उन पाए वो अपन घूरो कष्ट तक जा रहे इस पापन को मिलवा जाना इसको मिलवा जाना तो बस बेहती सो तजार हो गए जहाँ से करा उनको तो उन्हें भज्जा घूरो कसो सब रात में घूरो कसरा सुबह ऊपर को पलेचा वाले पीटने कसरा
1: अच्छा
0: वो पलेचा पीटने के तन दिन तो होंगे याद है बड़ी याद है
1: हाँ हाँ ये मैं भी दे रहा
0: हूँ ये भी दे रहा था ना कि कसे जो सभी लोग आओ जाओ तो बस जो राजन को हाँ साफ चल भी हो गए तो राजा का कल के क्या है जो ऊपर का पलेचा नीचे कस दिया गया अच्छा कस तो उन्होंने भज्जा छोड़ चार के दोनों राम के पास है जंगल झाड़ी वाले निकल उठे निकल के भाभी पूरा पड़ोस की जनी ने दोहा बनी रेशम डोरा पाटे कोरे जले दियो रे चाटे का

0: देखो रिश्तेदारी है वो जब तुम दिन चटकाओ और टूटने से जब जुड़े नहीं वो जुड़े शुरू में गांठ पर
1: गांठ पर जाए
0: गांठ पर ये जाम है
1: नहीं गए
0: उनके तो रुक गए जो पड़ोस की
1: पड़ोस की कई जवाब
0: पड़ोसन ने सोची कि अगर हम भोजन कराओ तो केर वेर को संग
1: है सही है
0: बेर भर के जाओ तो उनने हदीसो जैसे कच्ची पुटिया पर मुद की वही रानास में ले गए
1: फिर मई खून पार ले गए
0: मई खून वही जहाँ उनकी राना सती फिर पहुंच गए भाई सतखंडा पे पहुंच गए तो अब उनने सोची रानी ने कि अगर भोजन जो है तो ये भूखी अब रात को है समझ गया ना हो तो हम भोजन में ले जाए तो भोजन उनमें लगा थाली को भी पहुंची तो लगा फारी जो छाजी पे चढ़ी भी तो बिस्किया पे रहती भी तो वो बजो बिस्किया बजो तो उनने बिस्किया की आवाज के सुनकर मोर भूल गई बन गई पड़ोसन दुहा दे रही

अरे भोर जी, अरे अबे नहीं खाओ नहीं तो भोर खा लो, इसे तुम बोलना नहीं, कहीं बाने फिर दो जाकर कहो।

कामनी। अरे खोलो का, अरे किवार जी उन खोलो कंठ के बार, लेकिन उनने नाव से कही के किवार नहीं खुली। अब जो जो है सुनो साधु ने, साधु ने सुनो दोहा, साधु के रामन से शंख बजे सा जू जा रे

0: कहे जी उन संत पदे से साधु जग बम घले रहे झूठ, अगर इतने में के बम घर रहो वो नहीं जग रहो तो कुछ कब पूछे थे।
1: सही है, का हो
0: का हो
1: कच्चे दुनिया भगत जाए विश्व न कर जाए।
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो पड़ोस में पता होगा कि रानी राजा के पास में भी गई। अब फिर की दो हाँ कह रही है

0: लड़की लड़का से लड़की भाली रे सो मेरे पे ब्याह जी। अरे ऐसी सासु का काम की हती तेरी कुखन बांझई हो जाती, और ऐसे सब कुछ जाए के लड़की होती तो परोस मेरी पे ब्याह शादी कर देती।
1: तो बोलती
0: ये तो गड़ी गया है ना यार, सुबह पटक थार जब थार पटक के भी भागी आई सुबह मेरे भी अब रात को समझ जब कहाँ जा रहा है जो सबीरम हो सोने घोरो मस्को उस चली गई। सो ससुर साहब ने कही करी दीमान जी ऐसे नहीं चलो, हम आपकी स्वागत कर रहे और सब बात को बाहुलाओ और भोजन करो, भोजन करके हम आपकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है जो भी रहते हो बच गए, खाना खाओ, खाना खा के और पीना सुनने सजाई तो उन्हें बिदाऊ उनकी कई वो में खाना पीना सब और महीना भर के लाने रखा था। खा पी के घरे चले गई। बस अब भी हती सो अब पीना हकावे बारे हती तो जैसे गांव के बारे करी तो उनमें मार जताई फिर भी भग के छोड़ के अब खुद उनने हकाई अब सुताई अब काले कबाजी ने हकाई सुबह हका के वो बस सब कहीं ऐसी और चली हुई तो शाम हो गई से एक बमूरा को पीड़ो रहे से उतरे बस गए। शाम हो गई से बस गए, बस के भी अब बोले कर ले सुनो सुधा का बोले कर ले का कर ले पापन को नहीं छोड़ जाने यही रुकता है। अब्बा सुन रही थी, बस सुन रही थी सुबह ने कही ठीक है सुताई अक्का से कही के सुताई अक्का।

के पत्ती लगाओ, सताई का अक्का गाय से तीन पात नहीं लगाना, एक अपन को एक राजन को एक रानी को। ये तीन पात में कहा खुलिया, बोले कल एक आपको एक हमको एक रानी को। अरे बोले कल रानी की फार के फिर दे मार, रानी की फार के मार फिर दे। पाता से लग के आई तो खाना खाओ, खाना खा के पड़ी पड़ी सोई। अब रानी ने सोची कि ये भगत तो हमें छोड़ के है, इसे का करें, जिस सुबह घोड़े की पछाई की एड़ रखी, एड़ बजट बार बड़ोर बंदी की, सुबह छोड़ के बाने पीने से मार लाई बड़ोर को, कि ये भगे तो जा एड़ टूटे समय यहाँ का अगर हम सो गए आँख खुल जाए तो हम इसे कचू के ले। सुबह सुनने थी तो घोड़ो भंचाई रात भाई को बड़ा सुबह तनो मुतनी बड़ोर कहीं दूर सो नीक चावा को ठोको घोरी में सुबह दूर पी दी। सो उनने कही रानी ने।

एनर्जी हर में बुझा गई हमें। हम न जई गांव के रहे न भई गांव के रहे, अभी सुनर बारे के चले गए, वे अपने भवन को चले गए। और रानी ने अति सुबह तुम नो वे घर वाले और बाने हकाओ हकाओ को रानी को गाड़ी हकाऊ थी हकाऊ थे रानी तो हका जो वैज्ञा से कचुवती तो राजा गिलंद की बाग में ये जा रहे सो अन्य भज्जा घर वन्य ना के तूपी माए की बोलनिया तूपी रानी वो तो मालिन है जिस मालिन गोली गोली कर ले गया। कौन कहाँ की पापन आगे कहती है तुमने एक मोर रानी ने वो मालिन को भीतर बीरा दे जाए। अभी तो राजन की बेटी थी तो कछु मोरन को कछु टूटो तो नहीं हकी भी तो बस तो अपने इंतजाम में अपनी कुठज्जा में उन्हें दुकान रहे कहाँ रहे सुई ऐसे कछु बिलादना हो गए दुकान दुकान। तो एक दिन आओ अब उनकी बेटी हकी राजन की जमदीप नाव तो का नाव तो बेटी जमती जमती नाव तो बेटी को सुबिन बे फूलन की तुला तो लगती बा सुबह मालन रोजी ना डाली लगा दे और फूलन को ले जावे। सो राजन ने हकी सोची के मालन तो इतने आओ तो हम आज बगीचा घूमने आए तो बगीचा घूमन गए भी सोचे बा राजन की लड़की रह रहे। राजन ने सोची कि जितो काछी माछी की तो जाहे नहीं है तो कहो राजा की लड़की सुबह जैसे कैसे अपने घोड़े घर पहुंची घर पहुंचे सो घर पहुंच पाँच के उनने कही अब्बा से कही मालिन से उनने कि माता जी रोज तो डाली तुम लगाओ आज डाली हमें लगाओ तो उनने डाली उन्हें लगाई रानी ने। अब बादशाह ने हकी सो राजन की पिया नहीं होती बाबे नहीं होता कहूं कहूं अबे नहीं होता पिया रखो। सो राजन ने सोची अब उनकी रानी हकी बादशाह की सो अपने उन्हें थारी लगाई दो उन्हें परसों बिजना की हवा कर रहे बिजना की हवा कर रही रानी उनकी बादशाह की। सो बनने सोची अगर बन के हमारे फल वाली आउती बन में ना छोड़ी आउती भाई ना करती हवा सोने हर सांस ले। सो बीजन ने सोची कि कोई बात में खरखसा है राजन की बात में कोई खरखसा है सुनना उसे पूछी जाओ। बोले क्यों खवास रखता बोले कल कहिए राजा कल कारण का है ई को राजा हर सांस ले रहे भोजन नहीं कर रहे कल ये रानी को बन में छोड़ी।

0: उनने अति से घोरो उनने सजो और वीरम ने सजो और पहुंचे वो लिखन ले चलो बताओ कि ते कौन छाण में छोड़ी। फिर जो रुख तने छोड़ी थी वही रुख तने ये गए दोनों जने नाव नींगो भी दो ही गए सो बोले कर ले। अब उनने हती सुबह गाड़ी पर पीनस की जो रास्ता थी बंद है सो मालिन के पास भी पहुंच गए राजा गिलंद के बाग में और गए पहुंच गए सो उनने कही थे ठीक है सो उतर जाके इनने का किस्सा करो कि डीरा दो जन ने गए सो उनने भैया मालिन ने उन्हें घर आए बोले कर ले क्यों रे कहा कि हो परदेसी कैसे फिर रहे तुम जगह बात वो हमारे राजा सुन पे तो तुम्हें जान से मारा ले। हाँ सुबिन ने आराम से मालिन को साधा तो मालिन से पूछी सारी बात तो मालिन ने उन्हें सारी बात बता दी कि रानी जो है और रंग महल में पहुंच गई राजा दिलंग की अरो कमाओ ने वास्ता तो बदमाश होते ही है तो कोई जो रूप काट को वो रूप काट उन्हें ऊपर जगह छाड़ी करी सो मालिन ने किसी उन्हें पहुंची राजन ने बोले कल ले दो घोरे वाले आए और भेजा के और बहुत परेशान कर रहे उनमें सब नाश कर दिया बगीचा को सो उनमें छिड़ गया चलिए तुमको राजा बुला रहा है। बोले कल ले हाउ साहब जब तभी ऊंची हाथी भीलपुल की और जहाँ से वे सज बज के फिर गए वे अपने अपने घोरी ले के बोले उनकी गैल में सलाह हो गई बोले कल ले तुमसे बात करे सो तुम मूर काट दो और हमसे बात करे तो हम मूर काट लें। बोले ठीक है सुबह गए सो राजन की बगल में एक ही बोले बैठो ये बोले बैठो। अब उन्होंने हाथों एक बीजक राजा गिलंद कि अगर जो बीजक जी ने पहुंच गए हम लड़की की शादी उसी के साथ करेंगे तो अब उन्हें किसो जब सलाह हो गई बस सका से काम लगाओ। अब वो रानी ने डीरा था कि देखो भाई राजा गिलंद ने जो बात खो बोली कि तो हमारी रानी बन जाओ बोली कर ले नहीं ये राजा गिलंद को बाग कटे चल जी और जी मकान गिले चल जी सुबीर ने की तो ठीक है सुबीर जो बन जो काम लगाओ सुबीर अपने मजूरी खोने की जाबा जावे से बाहर रानी जो बबी थी अति से छाजी पे दातन कर रही थी तो बीजक लाई थी बबी जब बबई लूटा के करती दातन वो लूटा में लिखो है तो सुबह बीजक को गए जो बात साल में बात बीजन बात ले बात साल में बीजन ने बात बोली कर ले ठीक है बोली कर ले कहे तुम तसला पटकत पटकत वो तो सार पांच ही की पड़ रही और तुमने पहचान नहीं करी कछु वक्त तुम ना तुम सानो हम झंडा रहे सुबह गए डारे सो आराम से गए डाल भी के लाने स्तन को तसला में से गिला पहुंच के वो इमेज दाओ बेटी में दवा में जो राजा गिलंद की लड़की सो उन्हें अति सो अब तो खिलाड़ी है सो उन्हें बोई लूटा दाओ बोई लूटा उनमें दाओ सुबह ने अच्छा ले लाओ ये गेंद की बल्ला क्या सुन और बल्ले लूटा उन्हें बाद में पहुंच सुबह सुनने फिर भेजो छड़ गया पकड़ लिया सुबह जब भी गए पकड़ा सुबह देख दाग के कर ले ये कौन मजबूर हैं ये तो कोई राजा है सर तो क्यों इनसे बोलत कैसे हैं बोले कर ले महाराज तो नहीं है मजबूर संजीव तो जो राजा पर बोले कर ले या पर बोले पकड़ लिया सुबह जब फिर गए बोले कर ले आ रहा चलो अब बिने मिल गई थी वो बीजक उनने वहां से उसे पूरा ये कब दो मिल रही दो मिल रही है सुबह कैसे लेकिन भाई फिर उनकी सलाह तो बात गई कि अगर तुमसे राजा बात करे तो हम उड़ काट ले हमसे करे तो तुम काट ले सुबह राजा का उसे बात ना कर गए चुपचाप बैठे रहे दरबार में भगियान एक दिन आ तो बोले मेरे को खिच्ची आके पहुंचे गए सो राजा ने कही बोले कर ले कवि साहब कहाँ के रहने वाले हो कैसे हो बोले कर ले दीदी फिर वह लड़की की शादी करी उन्होंने उनकी रानी ने हती बात से हो गए।
1: देखो दोस्तों जातो अपन सब जन ने किस्सा सुनी है यानी कि कहानी खो सुनी है और एक किस्सा को आनंद लाओ। अब एक के संगे संगे अपने दोस्त माता दिन को हो रहा आज के कार्यक्रम संजावे को समय तो अपने दोस्त

आखिरे अपन खाजी बताएं अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव, तो सुनो जी काकेरे।

0: प्रखंड के सभी श्रोताओं को भैया अपने काशीराम की नमस्कार पहुंच जावे। और भैया आज हम आप सबजन के लाने एक बहुत ही नौ नौ सौ कार्यक्रम लेके आए हैं। जी को भैया आप सुनो और सभी पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाम है सुनो जी का कह रहे। तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैयन की बातें करे और सुने। और एक क्रम में राम गोपाल दादा है, अपन इनसे बात करे और इन जी अपन को कुछ बताए। लेकिन ई के पहले अपन सुनत है एक बहुत ही नौने से गीत को। जी को भैया गाँव है रजनीश दुबे ने। और देखो ऐसे शब्द कहे इनने इसमें के आप इन शब्दन से गीत में इनने समझाओ है का कही। दरस राम के पाके और हो वे धन्य भाग जहाँ के। अगर दर्शन अपन भगवान राम के पाले हैं तो अपने धन्य भाग हैं। और भैया तो ये गीत को सुनो, आप सुनो सभी पंच भैया।
1: दरस राम के पाके

0: हाँ तो भैया अबे सुनो, अपन सब जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जू ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन खा गाओ के सुन बताओ है, और अपन सब जन ने सुनो है। अब अपन बात करत है रामगोपाल कुशवाहा जू से।
1: दादा राम राम।
2: राम राम।
1: अपनो दादा नाव का है
2: रामगोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितनी है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन कागे रे विवाह दादा
2: केना के पूरा पटो ग्राम केना जिला की गमगा कैसी नेवाड़ी मध्य प्रदेश।
1: तो अबे आप दादा का करे थे?
2: ये हल्को हल्को काम कर रहे अपने ढो बच्चे देखे ना बस।
1: और
2: वर्कर हम करा बस किए काम वाम हम करते नहीं।
1: आप अपने परिवार वाहन से का के वो चाहते हो?
2: परिवार वाहन से का कैसे बेचा को जब से तो जैसी समस्या है तो अपने भगत रहे।
1: आप जो बता रहा था कि बुढ़ापे में अपन का कौन कौन सी दिखते हैं उन लगत और का परेशानी दिखते हैं आउती है अपन का का
2: बुढ़ापे में? तो देखो ना खाना मुरत एक बार देखो घाम लगा काम दौड़ नहीं पाओ लिंग नहीं पाओ घूरे फिराज हर एक बात की मतलब नेक में मुश्किल दिखा दो।
1: और पैसे और समस्या है अपनी?
2: अब वो समस्या जो बाल बच्चे खा रहा है तो भी हमें नहीं आया हम खा रहे
1: अपने मोड़ी मोड़ा अपने पास बैठ पे जाओ
2: बैठ जाओ नहीं यहाँ पे तू सच है।
1: अच्छा
2: अस्पताल जाने हैं।
1: और अपने सेवा खुशामद के बारे में आप क्या कह सकते?
2: सेवा खुशामद सब करा थे जनाब जी बैठे अब बैठे भी है तबियत लोग ठीक नहीं है चला फिर कर लगे तना
1: दिक्कतें हैं उनको अपन कैसे झेल सका था का कर सका
2: आप झेल सका मतलब बैठ वो है सीधी बात है पैसा जो खर्च तो ठीक ही है। अरे कछु ना कछु ना तो 10-15 उसको तो खर्च है आदमी को मान के चलो कछु ना कछु वो 10 उठा के चल जाते हैं।
1: दिन भर आपको कैसे कटा
2: था? दो बच्चे उनका दिमाग लगा ले सिजारे सिजारे अपने छाने में चल बस।
1: अच्छा और

0: आपका दिक्कत दिखावे की तो दिक्कत कछु है नहीं ऐसी। हाँ
1: जी
0: हाँ, जैसे का आप बुढ़ापे की
1: बुढ़ापे मतलब
0: दिक्कत है आदमी का,
1: दिक्कत तो देखेगा नहीं होती नहीं है तुम्हें जो कागज है जो जो जो नहीं बांस पाए हम मतलब दिखा कगदा नहीं बांस पाऊ मुझे दिखा सकते।
0: और अच्छा ऐसी कौन अपनी परेशानी है जो आप ना कह सकत हो खावे पीवे की आपकी का है?
1: खावे पीवे कौन कमी नहीं है मतलब जो है नहीं है तो खा।
0: अच्छा अपने माता पिता की सेवा में वावे की में का अंतर है?
1: चलो इज्जत रहती समय अनुसार इज्जत रहती, इज्जत नहीं है और पापा जाना फेरी पापा जी जाना फेरी के मतलब अपनी अपनी को चाह रहा हूँ आदमी हमारे बाल बच्चों जो चीज मिल जाए हमारे को मिल जाए दूसरी की जेठानी न मिल गए दीवानी न मिल गए ऐसी समस्या है मतलब अभी के समय में।
0: तो अपन का के वो चाहते कि कैसे हो चाहिए अभी के सब का
1: जब जो हो चाहिए शांति हो चाहिए प्रेम हो चाहिए सब में बड़ा प्रेम प्रेम है तो उसे कबू आपत्ति नहीं है प्रेम है तो सब मतलब आपत्ति न आए उसे शांति है शांति से मतलब हरी सुविधाएं कबू आपत्ति न आए।
0: अच्छा जो आपने प्रेम की बात कही तो ये प्रेम में और काका छिपो अगर प्रेम ले तो काका अच्छा हो सका
1: प्रेम जो अपने मतलब ईमानदार काम प्रेम में ओवर का जो काम नहीं कर प्रेम मतलब जीव अजीव काम प्रेम
0: लड़ाई झगड़ा ना हो जाए पैसा टका खर्च ना हो जाए।
1: हाँ घरे पैसा रहे मतलब जो मतलब लड़ाई झगड़ा को काम नहीं।
0: तो अपनो का के वो है रेडियो में जो भी आपका सुने आदमी कैसे अपने बाप मताई की सेवा करे चट जी और कैसे रहे चट जी आपका कंचाओ सब जनन से आपको का के वो है
1: बात तो बात खूब बड़ी है मतलब ऐसे बाप मताई की सेवा करे
0: तो वही बात तो बड़ी बात तो मतलब शुरू से आप बताओ
1: यात्रा ना कछु।
0: हाँ यही बात आप यही बात पूछन चाहो शुरू से बता दो आप के आपका के वो चाहते
1: जो अपने बाप मताई को माने उसे भगवान को माने सब इज्जत रहे प्रेम रहे लक्ष्मी जी रहे सब मतलब नहीं की ऊपर जो बाप मताई को ठुकराओ तो तुम्हारे बाल बच्चे ठुकरा मतलब आगे चली जाइए तो मतलब
0: अबे आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे।
1: तीर्थ यात्रा मतलब जैसे पैसा है देने बाल बच्चे चले जाए तीर्थ यात्रा हुआ अब पैसे नहीं करते जाकर आगे है जो मतलब है चले जाओ पैसे आगे चले जाए अब जैसे पैसे ही नहीं जाता कहाँ जा रहा है रोटी नहीं खा पा रहा है आँख से कमजोरी हो गई पैसा खर्च को मिल नहीं रहा है पेंशन बन जाए तो अच्छी बात है।
0: और का के वो चाहता
1: जी उठाउ के आराम चाहू बस मिल जावे पेंशन बन जावे तो पैसा खर्च को जाओ गए लड़का वाले अपने बाल बच्चे को संभाले खाने दीवे तीन चार सौ महीना मिल गए तो अपने उम्र खाद चलाते हैं।
0: ठीक है दादा जब आपने अच्छी जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो भैया अबे अपन खान ने बुढ़ापे की सारी बातें बताई हैं कि ई बुढ़ापे में कौन कौन सी दिक्कतें हैं का परेशानी है और अपनो जीवन ई उतरती अवस्था में कैसे कट रहो है। और एक बात और इनने अच्छे तरीके से बताई है कि अगर पैसा होते तो हम घूम लेते कोनो आमदनी हो जाए या को हमें पैसा दे रखे चारों धाम करें। और भैया ये तो बातें अपनी अबे हतीसो सब जन ने सुनी ही है लेकिन आप लोग जा भी कह रहे उन्हों को भैया बिल्कुल बात नहीं मैं बताएं तो अपन और सुनत है एक गीत को और ये गाँव है भैया वंदना अहरवाल ने और इनने देखो इस शब्द में काका गौवा के गोबर मंगाओ यानी गौ के गोबर मंगा के जी अपने और चौक पुरा रही है और शुभ संदेश की बातें कर रही है और संदेश दे रही है। तो भैया अपन सुनो सवई पंच भैया सुनो।

हाँ तो भैया अपन और सुनत है एक गीत को, जी को गा रहे हैं उमा शंकर नामदेव, और जिनके बोल हैं सब देवन में सबसे पहले प्रथम पूज मनाएं। तो भैया आप सुनो और सभी पंच भैया सो सुने।

हाँ तो भैया अबे सुन रहे थे जो कार्यक्रम सुनो जी का केर है। ये कार्यक्रम में आप सब जने जानते ही हैं कि हर रविवार को बूढ़े पुराने दादन की बातन को सुनत हैं, जिनने अपनी बातें बताई हैं कितने अच्छे तरीके से अपनी बातें बताई हैं, और ऐसा ही हम हर रविवार को लेके आउत है कार्यक्रम को सुनो जी का केर है। अगर आप और अपने दादा पिताजी की अच्छी देखभाल करत हो तो हमें जरूर बतावे, और अगर दादा अपने सुख दुख की बातें करें चाहू थे तो हमें सो बतावे भैया हमारे पते और फोन नंबर पे। और देखो बतावे के लाने लिख लो भैया हमारा पतो और फोन नंबर। तो भैया हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। अब ई बातन के संगे संगे अपने दोस्त काशीराम को होते है समय कार्यक्रम से, तो भैया देव आज्ञा और यही कार्यक्रम में फिर से अपनी मुलाकात हुई तब तक के लाने

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप आ गए इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और साथियों, हम लेके आ गए आपके लाने जो प्यार हो सो कार्यक्रम मेरी बुंदेली मेरे गीत। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार भैया, को बोल रहे
2: हैं सर?
1: हाँ दीनदयाल भैया, कैसे हैं? बिल्कुल दीनदयाल भैया, आपको मेरी बुंदेली मेरे गीत में बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो? ऊंचे पहाड़ पे बैठी मैया रतनगढ़ वाली।
2: जी सर।
1: चलो भैया, दीनदयाल भैया, हम आपको जरूर सुनवाए हैं जो गीत। और कहा हो रहा अपनो?
2: बस बढ़िया है सर, पानी वानी लगा रहे हैं खेत में।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप ऐसे फोन लगा उतरा बुक करें।
2: ठीक है सर।
1: नमस्कार भैया।
2: नमस्कार नमस्कार सर।

0: हेलो,
1: नमस्कार नमस्कार महेश भाई, कैसे हैं?
0: बढ़िया है सर, बढ़िया है भैया। सब आप लोग के पाए, ऊपर वाले के पाए, और बहुने वाले हो गई, पानी आने लग रहा।
1: चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बुंदेली मेरे गीत में कौन सा गीत सुने हो?
0: आज हम गीत सुने प्रियंका किशोरी और छोटे राजा।
1: प्रियंका बुलबुल जी की आवाज में?
0: हाँ।
1: चलो ठीक है। अच्छा, गीत के बोल बता पाए आप?
0: एक गीत कोई गाओ सुना दीजिए थोड़ा।
1: चलो
0: बोल तो, हाँ बोल, याद नहीं आ रहा है।
1: चलो ठीक है, हम उनकी आवाज में आपको गीत जरूर सुनवाए।
0: ठीक है भैया, जय राम जी की।
1: जय श्री राम, जय श्री राम।

भगवान शंकर की बारात पहुंच गई महाराज हिमाचल के। जब सर्पों का श्रृंगार हुआ भगवान शिव का तो वहां देखो एक बार

नादिया भागा, भगवान शिव का सब परिवार बिखर गया तो एंड में क्या होता है? बिखर गया परिवार, बात जा बनी बनाई में, और सच जाने से पुरारे अपनी हवा हवाई में।

कहना है कि मांग लाल है बिंदिया भाल है कंगना कलाई में और चंद छबी मुख चंद विराज गोरा।

0: शंकर से सगाई में मस्त रहे चलम।
1: नंबर दसवा चार साल।
2: बिल्कुल भैया बिल्कुल, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
1: हमें सर वो सुनवा दीजिए, कचरिया जी को भाव ब्याह। हम अपने गांव जुगियाई से बोल रहे हैं, सतीश साहू।
2: जुगियाई से सतीश साहू जी?
1: जी हाँ सर।
2: बिल्कुल सतीश भैया, आपको जरूर सुनवा है जो गीत है।
1: हाँ सर, और सब बढ़िया है सर?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बढ़िया है?
1: हाँ सर, सब राम राजा की कृपा है, आप लोगों की सब बढ़िया है।
2: चलो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे रेडियो बुंदेलखंड सुना तो हम आपकी फरमाइश जरूर सुनवाए।
1: ओके सर।
2: नमस्कार भैया जी।
1: नमस्कार।

0: सचिन भैया को नमस्कार है।
1: नमस्कार नमस्कार, कहाँ से?
0: मैं बाबू यादव सारनाथ वाराणसी से भैया।
1: बिल्कुल बाबू भैया जी, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
0: हमें सर वो वाला भजन सुना दीजिए।
1: कौन सा?
0: साथी मन से जो कोई प्राणी नगर ओरछा आवे
1: जी,
0: वही भजन सुना दीजिए।
1: चलो ठीक है बाबू भैया, हम आपको जो गीत जरूर सुनवा दें।
0: धन्यवाद भैया आपका।
1: बिल्कुल, आप ऐसे सुनते रहोगे बुंदेलखंड। ठीक
0: ठीक है,
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: साथियों, अगर आप भी सुनना चाहते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को। साथियों, हमारा नंबर है
1: 9425147726।
0: बिल्कुल साथियों, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को, तो सुनिए ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे जी आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। तो दोस्तों आप सब जन को जी आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों आज की सभा इतनी संपन्न होत है, सो चलत चलत आपों ने लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आपों ने फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सकें। दोस्तों हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतनी समापन होवे को समय हो गयो है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।